फसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे, केसो फसन फसो माया में जो चक्कर फिरा के रे, भजन ना पायो।

गोपाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। गोपाल भय भूरे गर्व भौ चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हट्टी।

हे अमारो नाथ की अमारो कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोता साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि शुभकल कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, नए नए कार्यक्रम इस कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आते हैं। साथ में हम प्रयास करते हैं कि हमारे श्रोता साथियों को वो छोटी से छोटी जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध कराई जाए, पहुंचाई जाए कार्यक्रम के माध्यम से, जो आपको लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और हम देख भी रहे हैं। हम कार्यक्रम को जब बनाते हैं तो सारे बिंदुओं को हम कोशिश करते हैं कि कवर करें। हमें लगता है कि अब चूंकि हम इस कार्यक्रम को मनाते मनाते अब हमें ऐसे विषय ढूंढना होगा, ऐसे विषय के लिए चयन करना होगा जो आपके लिए एकदम नए हो। हम कार्यक्रम के माध्यम से कई दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं कि शुभकल कार्यक्रम में आजीविका से जुड़ी बातचीत करते हैं, हम शुभकल कार्यक्रम में पर्यावरण से जुड़ी बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है श्रोता साथियों कि अब शुभकल कार्यक्रम में बदलाव की जरूरत है, अब उस शुभकल कार्यक्रम में कुछ ऐसा जाना चाहिए जो दिल को छूने वाला हो और आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो? तो इसके लिए साथियों, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि जब आप हमें बहुमूल्य सुझाव देंगे उस पर हम काम करेंगे, उस पर हम कार्यक्रम को बनाएंगे, फिर उस कार्यक्रम को आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी साथियों रहती है। तो हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आने वाले अब समय में हम इस कार्यक्रम का बदलाव करेंगे और इस कार्यक्रम में बेहद जानकारी जो आपको हम उपलब्ध कराते हैं उससे और अच्छी जानकारी आपको उपलब्ध कराएं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि बहुत दिनों से चल रहा है कुछ नया करने के लिए, हम वही पर्यावरण पर बातचीत करते हैं, जलवायु पर बातचीत करते हैं, आजीविका पर बातचीत करते हैं, लेकिन साथियों आज हमारे दिमाग में एक सवाल आया कि हमारे श्रोता साथी, चूंकि हमारे साथी खेती किसानी करते हैं, खेती किसानी में चूंकि अगर पर्यावरण को जोड़ा जाए तो एक अलग पहलू हो जाता है। यदि खेती किसानी में हम दूसरी अन्य चीजों को जोड़ा जाए जैसे आजीविका को जोड़ा जाए तो वो अलग बिंदु हो जाता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चूंकि हमने पहले शुभकल कार्यक्रम जब स्टार्ट किया था, शुरुआत इसकी की थी, तब हमने एक कैंपेन किया था कौन बनेगा शुभकल लीडर, तो उसमें हमने जो 5 गतिविधियां इस कार्यक्रम के माध्यम से ली थी वो थी किचन गार्डन, अमृत मिट्टी बनाना, केचुआ खाद बनाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यानी कृषि वानिकी। तो ये सारे विषय जो 5 विषय थे उस विषय पर हम पुनः जाना चाहेंगे, क्योंकि अब वो समय है कि हम अपने श्रोता साथियों को वो जानकारी उपलब्ध कराएं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में साथियों आज हम बात करेंगे अमृत मिट्टी बनाने की। अमृत मिट्टी बनाने पर हमारे बैरू भौजी का जो किरदार है, जो आपको बहुत लुहावना लगता था, बहुत बेशक पसंद था हमारे श्रोता साथियों को, तो आज उनका कैरेक्टर भी हम इस कार्यक्रम में लेकर आएंगे। साथ में हमारे जो विषय विशेषज्ञ से जुड़े उनसे हम अमृत मिट्टी बनाने सीखेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है अमृत मिट्टी बनाना, और लेकिन इस जलवायु को देखते हुए, इस खेती को देखते हुए अगर हम बात करते हैं जैविक खेती की, तो उस जैविक खेती में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अमृत मिट्टी, क्योंकि नया है ये खाद बना। हमने मटका खाद सुना होगा, केंचुआ खाद सुना होगा, गोबर की खाद सुना होगा, तो इसका कॉम्बिनेशन जिसे कहा जाता है कि हम एक जगह ऐसी जो फालतू चीजें जैसे पत्ता का इस्तेमाल हम करते हैं, फेंक देते हैं उसको, या तो जला देते हैं, गौमूत्र इसमें लगता है, गोबर लगता है इसमें, तो तमाम प्रकार की जो चीजें हैं उस अमृत मिट्टी बनाने में लगती है। तो आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में साथियों अमृत मिट्टी बनाना आपको बताएंगे, बैरोजी का करेक्टर आपको सुनवाएंगे, लेकिन साथियों बातचीत हमारी काफी हो चुकी है, एक गीत के साथ आपको मनोरंजन कराते हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को।

0: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम सुपकल में। और साथियों, अभी आपने नारायण दास दर्द और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से लोकगीत को सुना, पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत है। आप कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बैरू भौजी का किरदार जो हमारी निभाती हैं, उनसे हम अमृत मिट्टी बनाना, चूंकि उनने भी बताया है, तो आइए इस नाटकीय रूप को हम सुनते हैं।
1: अरे लालाजू, आज तो बगल में रेडियो रखे हो और जो, लेकिन का कर रहे हो तुम?
2: अरे भौजी, कर तो तुम रही, तुम बताओ का कर रही? आज तो बड़ी गजब ढा रही तुम तो।
1: अरे लालाजू, का इतने ही जा रहे थे ना, एक महीने की बजा रहे हुए हूँ, लेकिन तुम का कर रहे?
2: अरे भौजी मोई ना सुनो, अब वो कितनिया के आधी अधूरी जानकारी ले लो, सो कितम के नियत ना घर के ना घाट के।
1: का कह रहे लालाजू, आधी माधी कर लेते सो वही कर रहे, का कर रहे?
2: अरे भौजी ध्यान से सुन, जा कह रहा है कि अगर अपन को आधी जानकारी हो गई है कछु भी चीज की, कछु भी काम की, तो ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं।
1: सो बास का कह रहे लाला जी, घर को पता, घर को ना घाट को?
2: अरे बाकाना दूसरी, हम जा दूसरी कह रहे कि अब जो जो जो काम कर रहा है, जो हम वो बना रहे, जो हमने एक दिन सुनी थी का अमृत मिट्टी।
1: अमृत मिट्टी के बारे में सुनो तो?
2: हाँ, सो अब हमने बात सुनी तो है नहीं, अब लेकिन ध्यान से नहीं सुन पाई, सो अब लगे हैंगे जी सब बनावे हम।
1: तुमने ध्यान से काहे नहीं सुनी भाई, पूरी काहे नहीं सुनी लालाजू?
2: अब बस भौजी, तनक एक संग दूसरा काम कर जा रहे थे, वो एक जने हमें बता रहे थे भी, बड़ी बता तो इन्होनी तरह से रहती, लेकिन हाँ। हमने ध्यान से नहीं सुन पाई, हमारी गलती हो गई अब।
1: अरे लालाजू, मैं जानत होंगी तुम्हें, तुम मन के तुम और लगो हो जी, अब तुम्हें काहे को बस सुनाई दे है ढंग से, अब तुम सुन रहे थे तो बज्जे सुन लेते होते, उनमें मन ना लगाते।
2: अरे भौजी तुम्हारा केवे को मतलब का है, कुन में उतर तुम मोड़िया ने देख रहा हो
1: तो? मैं तो जय कह रही, तुम जो ही कर रहे हो और बामे ध्यान कम दे रहे हो, अगर कोनो जानकारी सुनना है तो ढंग से सुन लो।
2: अब भौजी नहीं सुन भाई अब, लेकिन मैंने कही चलो जैसी सुनी तो बना ही ली मैं।
1: हाँ ये राम भाई, तुम्हें तो खूब बात है वो, अब बना लो।
2: अब भाई तो कर रहे हैं भौजी, सब तेवर बीच में आ गई।
1: अच्छा तो अभी तक का करो तुमने?
2: अब जी सब सब सामान तो सट्टा बटोर लो, खट्टो तो कर ही लो।
1: लाला मोई तो तुम्हें देख के हंसी आ रही।
2: अब क्या भौजी, जब काम करे तो भड़ना जी, ऐसे तुम्हें कौन सी हंसी आ रही?
1: ऐसे काम को देख भड़ गए जैसे मन जाने का पूरी अमृत मिट्टी तुम्हारी बना रहे हूँ।
2: अरे भौजी, जब अपन पूरी तरह से, जब पूरी तरह मिट्टी में मिल के काम करें तो अच्छी तरह से बने, हमने सुना कि कोनो चीज में अच्छी तरह से घुल मिल के काम करो तो अच्छो हो जात।
1: का कह रहे लालाजू, दूध में मिला मिला के पियो सो अच्छो हो जात?
2: हाँ, कोनो काम अगर अपन अच्छो घुल मिल के करे भाई रुच से, सो हमने की तना भड़ जाओ तो कौन सी दिक्कत है?
1: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा है कि वो मैं भिड़ जाओ तो मैं क्या मैं और मुँह पोत दू, मैं तुम तो नेक और अच्छे लगो सुगाटा जैसी।
2: तो फिर भौजी दिखाए कैसे सुगाटा से, तो मैंने बन जे
1: का कह रहा है लालाजू, चाटा खल दे, मैं देखा तो मैं ये हो गई तुम्हारी अभी।
2: अरे भौजी तेन तो कह रही कि सुगाटा से बन जे, तो मैंने कही सुगाटा से बन जे से, तो दिखाए कैसे चाटा को मार रहा तुम्हें?
1: अच्छा तो मैंने एक तेज भूल करे तुम तो वही की वही घुसरू घुसरू कर ले।
2: अब तो सुनाते है इतनी तीज कहते हैं, मैं कौन बिहारी हूँ?
1: कहा कह रहे लालाजू?
2: कछुनी जग के रहे, हंस के कह रहे थे कि अब बता तो करूँ काम, है समझ में नहीं आ रही।
1: अरे लालाजू तुम चलो मैं ही बता देता हूँ, मुझे तो मालूम है, मैंने खुद सुनो तो।
2: अब लेकिन तू तो भौजी जाने तो सज के तो ठाड़ी है।
1: कहा कह रहे लालाजू, तू तो जाने है?
2: हाँ उसने तो ठाड़ी सजी,
1: तो अब सजी ठाड़ी, लेकिन अब मैं तुम्हें बताए दे रही होंगी पहले, अब तुम अब लगे तो होंगे काम कर भी, तो मैंने की अब तुम्हें बताए देता हूँ।
2: अरे मैं सब जाना जा, आई हुई मुई ने सज बज के बातें मारे झूठी झूठी।
1: कहा कह रहे लालाजू, झूठी कह रही?
2: अरे भाजी कछु नहीं, अब बता देते हैं तो।
1: हाँ तो मैं बताए देता हूँ, अब मुझे जाने होते, अब मैं टेम हो रहा हूँ वो, तो देखो अमृत मिट्टी तुम देखो जो बना तो लही है, लेकिन की के लाने तीन चीजें, जैसे एक तो अपन अमृत मिट्टी जो बना रहे, लेकिन ई के पहले अपन को अमृत जल बनाने पर रखे।
2: अच्छा अमृत जल बनाने?
1: हाँ, यानी कि अमृत पानी बनाने, वो कैसे बना थे?
2: हाँ
1: वो जो गज्ञा को गोबर हो
2: तो
1: बाय ले लो,
3: ठीक है,
1: और का ले लो गोबर ले लो है, और एक जो सड़ो गड़ो फल हो तो अपनो, चाहे केला हो चाहे वो अपन जो मतलब नहीं खा रहे सीधी बात।
2: अच्छा
1: है, वो ले लो सुबह एक डिब्बा में घोल के और रख दो, कह देना के लाने तीन दिन आके लाने, ठीक है लालाजू? आ रही समझ में?
2: बिल्कुल बिल्कुल, नोनी तरह से यहाँ जा रही।
1: कहा कह रहा लालाजू, ने कम तरीका से आ रही?
2: अरे बात पूरी तरीका से आ रही।
1: हाँ हाँ भाई, तो मैं कह रही सुबह एक डिब्बा में अपन रख दे तीन दिन आके लाने, लेकिन अपनी जो अपन ऐसे महरी टारत, एक चमचा कहूँ ऐसा घुमा दे कबू ऐसो घुमा दे उल्टो सीधो मतलब तो वह चमचा को ऐसो घुमाने
2: कबो जी कबो हड़िया को नेचो करने के ऊपर करने।
1: अरे लालाजू बस चमचा से अपन महरी बस जब अपन बेसन बस जानत के भाव में गुठलाना पड़ जाए सुबह चमचा को ऐसो घुमा और फिर ऐसो घुमा।
2: अच्छा ईलंग और उलंग
1: खाओ सुबह एक ही मिल जाए है तीन दिन में फिर उके बाद लालाजू हो तुम्हें जो करने के परते बनाने वो बनेगा अपनो जल जल बनेगा वो
2: आओ।
1: अब अमृत वो बनाने अपन को अमृत मिट्टी
2: हाँ।
1: उके लाने तुम्हें जो करने पड़े के एक खेत में जितने तुम्हें बनाने उतेक में तुम पहले मट्टी बिछाओ जैसी इतनी सी परत में मतलब मट्टी बिछा लो पट्टिया मान लो फेक बनाने तो अपन पट्टिया जितनी मट्टी बिछा ले उके ऊपर गोबर बिछा दे फिर उके ऊपर पानी लगा अमृत पानी लगातार किन छट जाने ठीक है लाला जी।
2: अच्छा
1: आओ और फिर उके ऊपर अपन फिर से मट्टी बिछा दे
2: फिर से मट्टी बिछा
1: आओ मट्टी बिछावे के बाद फिर अगर कूड़ा कचरा है अपनी गली में भैसन को तो उके ऊपर बिछा दो बाकी आ रही
2: हाँ आ रही है
1: फिर उके ऊपर फिर मट्टी बिछा दू है और फिर जो अपन ने बीज लेने पर 10 प्रकार की में
2: 10 प्रकार की बीज लेने
1: आओ चाहे गेहूँ बाजरा मटर सब ले लो और उमे भी बे दू और पानी लगातार किन छत जाओ ठीक है फिर लगातार 10 दिन बाद अपनी जो गेहूँ उगे भी वो लाला जी ये और करने कुछ अपन ने बीज बोए बाकी ऊपर अपन को वो बिछाने का
3: पत्ता मत्ता
1: डालने ठीक है डालने के बाद उमे अपन को लाला जी तुम तो सुन नहीं रहे मेरी बात
2: मुड़ी तो मटका जा रहा हूँ मैं इतनी
1: मुड़ी से नहीं मैं तो हूँ का दियो।

0: भूखा देने आए। अब मैं तो ये सब देखा जा रहा हूँ और करत भी जा रहा हूँ।
1: तो ठीक है सो उके बाद तुम वो अपनी जो हो जाए मैं पेड़े बड़ी सी मतलब उगी आए नहीं अपने सुबह काट के आधी वही में मिला दूं गाय में वही में जो अपन ने लगाई है।
0: अच्छा
1: हाँ फिर 10 दिन बाद हो जाए तो फिर से मिला दूं और जब 100 दिन बाद फिर से हो जाए तो भाई पूरी छोटी छोटी करके काट लो और ऊको फिर से वही में मिला दूं।
0: तो फिर बन गई मट्टी
1: फिर ऊको वहाँ फिर ऊको फरुआ लेके मिक्स कर लूं।
0: अच्छा
1: हाओ मिक्स करने के बाद फिर जितने अपन खेहूं कछु लगा रहे तो वो एक अपना रासायनिक खाद को उपयोग करे जो आपको तत्व मतलब बाँ में मिल रहा है जैसे साथी इनकी कहावत रहे बाँ में रासायनिक बाँ में खाद में ज्यादा वो मिल जाते हैं तो ई में भी उतना ही तत्व मिले और 2-3 चीजें और फायदा भी ई में।
0: तो अब तो बिल्कुल मैंने ध्यान से सुनने की बात है अब तो मैं बिल्कुल बना ही ले हूं।
1: हाँ तो ई में 2-3 चीजें जो फायदा की है एक तो ई से अपना स्वास्थ्य सही रहेगा है लालाजू और दूसरो अपनो पर्यावरण अच्छो रहेगो। लालाजू हो देखो मैंने अब टोको तो और तुम तो नोरा जैसी मुड़ी नहीं मटका उसके मुड़ी लगे मटका भी मियो कछु में तो अपनो मोह है जो मियो तुम मोह पिराल लगो बतात बतात।
0: अरे भौजी तो गकन्ने मुँह तो पूरी समझ में आ गई कैसे बनाई जाती।
1: हाँ हाँ तुम तो वही ले आजो 2000 की बोरी आ रही रासायनिक खाद की वही ले आजो काहे को जो बना हो तुम्हें तो तुम होंगे पक्के तुम तो नाव कर रहे थे सुन के तुम होंगे पक्के आलसी।
0: अरे भौजी अब तो बिल्कुल पूरी ध्यान में आ गई कि कैसे बनाने जरूर बना ले अब तो मैं।
1: हाँ तो लालाजू मैं चली
0: बिल्कुल अब तो भौजी जरूर मिट्टी बनाऊं और जरूर अपने पर्यावरण को बचाऊं।
2: एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में और साथियों अभी आपने बैरू भौजी को नाट के रूप में सुना और इनसे अमृत मिट्टी बनाना कुछ तो हमारे बैरू भौजी ने बता ही दिया है। अब हम आपको एक्सपर्ट के पास ले चलते हैं और उनकी सलाह हम लेते हैं अमृत मिट्टी बनाने के लिए। तो आइए उनसे बातचीत करने से पहले हम एक और आपको लोकगीत सुनवा देते हैं क्योंकि मनोरंजन भी होता रहेगा और कार्यक्रम सुनवाते रहेंगे तो आनंद ही कुछ अलग आएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से लोकगीत को रमेश और उनके साथियों की आवाज में।

0: अभी आपने इस प्यारे से लोकगीत को सुना और लोकगीत का आनंद लिया। आइए अब आपको आलोक जी के पास ले चलते हैं, अमृत मिट्टी बनाना वो बता रहे हैं, तो जानकारी ध्यान से सुनिएगा, बाद में हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे तो तैयार रहिएगा। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से चर्चा को।
1: जैसा कि है अमृत मिट्टी, अमृत मतलब कि जो भी जीवनदायी चीज होता है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिट्टी को एक जीवन, अलग तरह का जीवन दिया जाता है, जिसमें उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अमृत मिट्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से आया कि अगर मान लीजिए अब मानव नहीं रहता है, जब जंगल रहते हैं तो जंगल के पौधे बिना बारिश और
0: बिना जलवायु के बड़े होते हैं,
1: बिना अतिरिक्त खाद के कैसे हरियाली
0: सही बात
1: रहते
0: है।
1: हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर अमृत मिट्टी को हम लोगों ने बनाने का कोशिश किया है। अमृत मिट्टी अगर हम बात करें तो अमृत मिट्टी के लिए बहुत सारे अलग बहुत तरीके नहीं है और बाहरी तत्व की इसमें कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप जान सकते हैं केचुआ खाद के लिए केचुआ लाना पड़ेगा या दूसरी चीजें को लाना पड़ेगा, लेकिन अमृत मिट्टी एक ऐसा है कि आपका अगर गांव में जो भी चीज संसाधन है, जैसे गाय है या आपकी खेती का से निकलने वाला जो भी खरपतवार है,
0: खरपतवार
1: तो
0: मतलब
1: इसी
0: आप
1: से तैयार होता है। देखिए ये अमृत मिट्टी को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, खाद के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं और इसको भूमि की उर्वरा शक्ति जो बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आपके पास जैसा भी संसाधन है इसके हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष जगह तैयार करने की जरूरत नहीं होती है। आपके पास जो भी भूमि उपलब्ध हो और जिस भूमि में आप दूसरा उपयोग नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करते हो, तो उस भूमि का उपयोग कर सकते हैं। ये इस अमृत मिट्टी को बनाने में करीब करीब 90 से 100 दिन लगते हैं, लेकिन इसकी उर्वरा शक्ति इतनी तेज और इसकी जो जल धारण शक्ति काफी अधिक बढ़ जाती है, तो कम पानी में भी आपकी खेती बहुत अच्छी होती है। अमृत मिट्टी बनाने के लिए जो सामानों की जरूरत होती है या जो भी संसाधन की जरूरत होती है, वो आपके आसपास या आपके खेत खलियान से ही निकल के आता है। जैसा अगर कह सकते हैं गाय का गोबर, गाय का मूत्र, खेती बाड़ी से जो
0: खरपतवार निकलता
1: खरपतवार
0: है।
1: जो निकल के आता है वो, ये बस ये दो तीन चीजें हैं, और जो भी बीज आप लगाते हैं वो बस यही चीजें हैं जो आप अमृत मिट्टी में आसानी से इसका उपयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं। इस अमृत मिट्टी की खासियत यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपचार कर सकते हैं, कोई मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में परिवर्तित कर सकते हैं और या अमृत मिट्टी कहीं बनाकर किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। ये तो मैं जैसा आपको बताया कि ये आपके ऊपर सारा निर्भर करता है कि आप जो छोटे से जगह पर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं या बड़े भाग में आप बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी
0: जी
1: जस्ट बताया
0: जी
1: कि बुंदेलखंड के बारे में अगर थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, बुंदेलखंड में जनरली आप देखोगे वो काफी सूखा ग्रस्त
0: बिल्कुल
1: है
0: जी
1: जगह है और यहाँ पर जलधारण क्षमता बहुत कम है। जलधारण
0: जी
1: क्षमता कम होने की वजह से क्या होता है कि उनको बार बार पानी की, किसी भी फसल में बार बार पानी देने की
0: यानी
1: आवश्यकता पड़ती
0: आवश्यकता
1: है।
0: पड़ती
1: तो अगर हम अमृत मिट्टी के इस प्रोसेस को अगर बुंदेलखंड में लाएं,
0: जी
1: जैसा
0: जी
1: मैंने अभी रामपाल भाई को भी बताया
0: जी
1: और अपने किसान भाइयों को भी बताया कि अमृत मिट्टी एक ऐसा मिट्टी उपचार है या खाद आप कह भी सकते हैं जिसमें गुणवत्ता जो भूमि भूमि
0: जी
1: या मिट्टी
0: उर्वरा
1: की
0: शक्ति
1: गुणवत्ता है उर्वरा शक्ति
0: उर्वरा
1: वो
0: बढ़ाने
1: काफी
0: की
1: बढ़ जाती है
0: जी
1: और जल धारण क्षमता भी बढ़ती है जिससे
0: अच्छा
1: आपको
0: कम
1: सिंचाई
0: जी
1: देर से
0: जी कम देनी पड़ती
1: कम
0: है
1: देनी पड़ती है। अब जैसा अभी मैं बता रहा हूँ कि जो अमृत मिट्टी है वो

0: ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कितनी भूमि में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आपके पास संसाधन कितने उपलब्ध हैं, आपकी अगर खेती हो रही है या कोई
1: जी
0: जमीन है वो कितना खाली पड़ा हुआ है जिसका
1: जी
0: प्रयोग
1: जी
0: नहीं करते हैं, तो उस पर सारा चीज निर्भर करता है। अगर आप मान लीजिए खेत का प्रयोग कर रहे हैं खेती के
1: जी
0: लिए, तो आप ऐसे भाग का प्रयोग करें जहां पर खेती नहीं करते हैं, और फिर उस मिट्टी का उपयोग आप खाद के रूप में अपनी भूमि में कर सकते हैं। या
1: अच्छा
0: अगर आपका खेत खाली है, कोई लगता है कि बंजर है या जहाँ पर हम खेती नहीं कर पा रहे
1: जी
0: हैं, तो वहां पर भी हम इसका प्रयोग करके अमृत मिट्टी बना सकते हैं,
1: जी
0: और उसके बाद फिर उसी खेत में आप दूसरी फसल ले
1: लगा
0: सकते
1: सकते
0: हैं
1: हैं। और
0: क्या। और ये तो और भी अच्छी बात है कि
1: बिल्कुल
0: किचन गार्डन, क्योंकि घर के नजदीक ही होता है,
1: जी
0: तो एक अमृत मिट्टी का प्रयोग करके अगर हम किचन गार्डन करते हैं, तो जो जो भी फसल होगी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, मतलब कि उसका जो
1: जी
0: भी, काफी अच्छी हो जाती है,
1: जी
0: और गुणवत्ता भी काफी, जो फसल की है वो गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो
1: अच्छा
0: किचन गार्डन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं।

0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो दोस्त मनीष कार्यक्रम शुभकल में पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आलोक प्रभात जी ने कितनी अच्छी बातचीत बताई है, हमारे वार्ताकार थी हमारी प्राची जी और बहुत अच्छी उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपकी खेती में गुणवत्ता लानी है, खेती को अच्छा बनाना है तो अमृत मिट्टी डालकर हम इसको अच्छा बना सकते हैं और उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये अमृत मिट्टी बनाना चूंकि बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने बताया है, आप भी अपने घर पे अमृत मिट्टी बनाकर अपने खेतों में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे बार बार हम कार्यक्रम के माध्यम से बताते चले आ रहे हैं कि हमें अब रासायनिक दवाएं जो हम खेतों में डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, उन पर हमें रोक लगानी चाहिए, दूसरों को समझाना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जो बीमारियां पनप रही है ऐसी रिपोर्ट बता रही है कि अधिकतर बीमारी जो रासायनिक खाद से उगाई गई सब्जियों से हो रही है। तमाम प्रकार की बीमारी जो अभी तक हमने सुनी भी नहीं थी, इस प्रकार की बीमारी अब हमें सुनने को मिल रही है। तो हमें इन बीमारियों से यदि बचना है तो जैविक पद्धति की ओर फिर से हमें मुड़ना होगा, जैविक पद्धति से हमें अपनी खेती को करना होगा। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है कि जैविक खेती हमारे किसान साथी इसको अब करें और अपनी खेती में बदलाव कर अपनी आमदनी को भी बढ़ा सकते हैं और जो हम अपने खेती के साथ, जो धरती के साथ, जो मिट्टी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उससे भी हम बच सकते हैं। साथियों हमें आशा है कि इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे श्रोता साथियों के मन में बहुत सारे ढेर सारे ऐसे सवाल होंगे जो हमसे पूछना चाहते होंगे और साथ साथ में बताना भी चाहते हैं, तो आप हमें यदि फोन करके बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9219207749। श्रोताओं आप हमें चिट्ठी के माध्यम से भी बता सकते हैं, जो पुराने हम चिट्ठी हमारे श्रोता भेजते थे हमें बहुत अच्छा लगता था, हम कार्यक्रम में उसको पढ़ते थे, जोड़ते थे, जो सुझाव रहते थे उस पर हम अमल करते थे, तब एक नया कार्यक्रम हम बनाते थे। बहुत खुशी रहती थी कि हमारे श्रोता साथियों का इतने ज्यादा स्नेह रहता है, प्यार रहता है। जैसे कि हम अभी पठा में गए थे और हमारे जो विजय जी हैं काफी नियमित श्रोता हैं और उनसे मिलकर हमें काफी अच्छा लगता है कि ऐसे हमारे नियमित श्रोता जो हमारे हर कार्यक्रम को सुनकर अपने बहुमूल्य समय निकालकर फीडबैक जरूर देते हैं, सुझाव देते हैं, चाहे वो बातें हमारी तुम्हारी कार्यक्रम हो, आज की बात हो, किसी भी कार्यक्रम के बारे में यदि उनसे जानना चाहे तो जान सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम उनको ऐसे हमारे श्रोता साथी जैसे वीकेएस जी भी हैं, ऐसे हमारे श्रोता साथियों को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम में जुड़कर फीडबैक हमें देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम पर हम कार्यक्रम बनाते हैं। हम चाहेंगे कि अब हमारे जो अगले कार्यक्रम बनेंगे उसमें आप अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि इस विषय पर हमें कार्यक्रम शुभकल में सुनना है, तो हम आपको रिकॉर्डिंग करेंगे और इस कार्यक्रम को बनाकर आप लोगों तक प्रस्तुत करेंगे। अब साथियों अब हमारा समय होता है आज के इस कार्यक्रम शुभकल से जाने का, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात।
1: शुभकल बदलती जलवायु के लिए।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूँ।
1: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
1: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे लेकिन उससे पहले यहां पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ई प्यारे से लोकगीत खो जी खो गा रहे थे बालिक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं करेंगे, आपको ले चलेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास, जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी, और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी, कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उनके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी।
0: नंदिनी जी
2: नमस्ते।
0: नंदिनी जी, हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहां आप बड़े हुए हैं?
2: तो देखिए, मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ। और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर गए थे दंतेवाड़ा बचेली में, एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
2: एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे, तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन बट की शुरुआत की थी। उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ, एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं। हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं। हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी, एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
0: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
2: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो, क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ, तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करते कि नहीं आपको ये करना है आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था। पीपल वे लाइक कि आप मतलब एक आपकी बेटी, आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी। साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना मतलब लाइक इतना इस चीजों पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
2: जी, तो देखिए, मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से गरा बन से भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है। हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में, आप कहीं भी हो, आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ। तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं, और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए। मेरा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है। तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है और सजग रहना है, और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें जिस पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
2: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ। हमें इस जगह शिफ्ट करना है, हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स, लाइक वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों के बारे में वैल्यू आएगी, और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा, वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स में पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
0: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
2: जी देखिए, स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है, अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहां बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेज होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेज के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए, और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले, तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो एज आई सेड तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी। तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए, एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे।
0: शुक्रिया नंदिनी जी।
3: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
1: अपने रेडियो अपनी बातें साथी हरो भैया हरो, अपन अब सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को, जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है वो। अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन शुभ कल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी शुभ कल। तो भैया ऐसा नहीं है, देखो शुभ कल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को शुभ कल देखने है गो। सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी।

0: કે ઉનને જો કામ કી વો નીવ રખી હતી ઉમે ભી સફળ ભઈ હેગી યાની પર્યાવરણ સે જોડો જો કાર્ય ભી કર રહી હતી ઉમે ભી સફળ ભઈ હેગી યહી સે અપન કો લગો કે હમ હોંગે કામયાબ મે આજ કે દિના અપન જો સફળ કહાની લેકે આથેંગે તો કાયના વા પર્યાવરણ સે જુડી ભઈ કહાની આપ સબકો સુનો આવે
1: ઓ વર્ષા હમે ભી લગા થેગો કે નંદિની દીક્ષિત જેસી એસી हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नोनो काम करो है गो और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे के वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगी लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सोगहन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं खासतौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश पर्यावरण संरक्षित के लाने को संदेश आप भी दो।
0: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जन तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को बरसा ने अकेले नहीं करो है गो हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे माता दीन भैया हैंगे अपने जगरूप भैया भी हते उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि शुभकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे जैसे अगर हमारे कोनू किसान साथी पूछत हैंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है गो तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे कौन सी खाद को उपयोग करवे तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और आप खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी
1: बिल्कुल और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी बहुत हो और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री बरसा का चयन किया गया था और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले होगो और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनो अच्छो काम करो जा रहा है गो तो बहुत बहुत धन्यवाद अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकते हैंगे और अगर सबसे ज्यादा जन के मतलब फोन आ गए हैंगे कि वर्षा की पूरी कहानी अब तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं नंबर वही है वो हमारा 92-19-20-77-49
0: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा आपने तो एने ही नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और सफल कहानी में अपन ने आज वर्षा की कहानी पे ज्यादा फोकस कर लो है गो सो इन सब चीजन पे आपको ध्यान नहीं देने है बस केवल मनीष भैया को उद्देश्य जो है तो वो जो है तो के रेडियो बुंदेलखंड को एक सफलता आज मिल गई है कि बड़ा अच्छा लग रहा है और इन सबको श्रेय जो है वो अपनी टीम को तो जाते ही है लेकिन संग में अपने श्रोता साथियों को भी जाते हैं क्या कि जो भी चीजें अपन इतने ब्रॉडकास्ट कर रहेंगे अगर अपने साथी भैया सुन के उनमें बदलाव नहीं करेंगे तो अपन और सफल नहीं हो पाएंगे तो हम साथियों से भी यही अपेक्षा करेंगे कि भैया आगे भी आपको साथ हमारे संगे ऐसे ही बनो रहे ताकि रेडियो बुंदेलखंड हमेशा ऊंचाइयों तक पहुंचत रहे और देखो आप ज्यादा बतकाव नहीं करने है गो काहे कि अपनो समय कार्यक्रम को इतनी समाप्त हो जा रहा है गो सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दो जावे की इजाजत
0: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में तब तक के लाने नमस्कार
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल वृक्षों को कटने से बचाओ वृक्ष ही जीवन

0: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हूँ।
1: सास बहू की साजिश
2: या ससुर जी का दुलार,
1: ननद जी से हो नोकझोंक
2: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
1: आपका अपना कार्यक्रम
2: बातें छोटे पर्दे।
3: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों आज के कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में। जी हाँ साथियों, कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की में महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई हर एक कहानी को हम सुनाते हैं आपके बीच में और हमारा साथ देते हैं मनीष जी। तो मनीष जी, आज हम अपने कार्यक्रम के तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि पिछले एपिसोड में हमने प्रवेश कर लिया था।

0: और आगे तीसरे अध्याय में क्या होता है इस पर हम और आप बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं।
1: जी बिल्कुल, और सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई की हम जो एपिसोड बाई एपिसोड आपको कहानी सुना रहे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको और हमको पता नहीं रहता है, और साथ साथ में हम उन छोटी छोटी बातों पर भी एक प्रकाश डाल रहे हैं जो उनसे जुड़ी बातचीत हो। तो अभी तक हमने इस पूरे कार्यक्रम में जाना कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह होने के बाद जब महाराज जी का देहांत हो जाता है तो अब उनके हाथ में जो कमान रहती है और झांसी की वागडोर रहती है उस पर किस तरीके से खरी उतरती है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था और उस समय अंग्रेजों के शासन के साथ साथ ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थी झांसी में कि वहां पर शासन चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई ने धैर्य का परिचय देते हुए और उस झांसी पर अपनी परचम लहराया और साथ साथ में ग्वालियर पर भी उन्होंने अपना कब्जा किया और ग्वालियर के लड़ाई के बाद उनका देहांत हो गया था। और साथियों, इसमें अभी तक आपने इन छोटी छोटी बातों को जाना कि किस तरीके से महाराजा जी का देहांत हो गया था। अब हम जानते हैं कि उनके बाद अब क्या होता है। तो सन 1752 ईस्वी में बारन हेंसिंगटन जने इस देश के राजाओं और प्रजा पर जो अत्याचार किया था, इंग्लैंड की पार्लियामेंट सभा में विचार करते समय यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में अपने राज्य का विस्तार करने या वहां का देश अपने अधिकार में लेने का प्रयत्न करना ब्रिटिश राजनीति और उसकी प्रतिष्ठा और इच्छा से विरुद्ध है। कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर ने लिखा है कि हमारे नूतन प्राप्त राज्य की मर्यादा इतनी विस्तृत है कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति का विचार करते हैं तब आयन बनाने वालों की इस उस गंभीर सूचना की बुद्धिमत्ता और आवश्यकता हमारे मन पर अंकित हुए बिना नहीं रहती है, जिससे यह निश्चित किया गया था कि हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति या राज्य विस्तार का काम करना ब्रिटिश राजनीति इज्जत और इच्छा के विरुद्ध है, परंतु यह निश्चित 6 वर्ष से अधिक समय तक न ठहरने पाए। सन 1790 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान पर चढ़ाई की और इसका आधा राज्य हस्तगत कर दिया था। फिर 6 वर्ष के बाद सन 1799 ईस्वी में लॉर्ड बेल इसने ने टीपू सुल्तान का सारा राज्य ही अपने अधीन कर लिया।
0: थोड़े ही दिनों के बाद कर्नाटक प्रांत और अवध के नवाब से लिया हुआ प्रांत अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया। इसके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बहुत संतोष हुआ, परंतु अल्प समय में ही उनके राज्य की मर्यादा बहुत बढ़ जाने के कारण उन्होंने घबराकर पुनः निश्चय किया कि अब हिंदुस्तान में राज्य प्राप्ति का कोई प्रयत्न न किया जाए। अल्प ऑफ मोइरा के गवर्नर जनरल होते ही नेपाल युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत बड़ा प्रांत ब्रिटिश सरकार के अधिकार में आ गया। तत्पर यह कि ब्रह्मा देश, आसाम, कुर्क, सिंध, पंजाब आदि बड़े बड़े प्रदेश क्रमश अंग्रेजी अमलदारी में शामिल हो गए। जब लॉर्ड डलहौजी सन 1847 ईस्वी में यहां आए तब उन्होंने यह निश्चित किया कि जो देसी रियासतें लावारिस होती जाएं वे ब्रिटिश राज में शामिल कर ली जाया करें और जिन रियासतों को दत्तक लेने के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है उनको लावारिस समझकर ब्रिटिश राज में शामिल कर लेना चाहिए। इस विषय में उनका जो मत था वह उन्होंने स्वयं इस प्रकार प्रकट किया,
1: मैं किसी के लिए यह संभव नहीं समझता कि वह इस राजनीति पर कोई आपत्ति कर सके कि जो प्रदेश पहले ही से अपने कब्जे में है उसके बीच में यदि कोई ऐसी छोटी छोटी रियासतें हों जो लावारिस हो गई हों, उन्हें अपने कब्जों में लेकर उचित अवसर आ पड़ने पर अपने मुल्क का विस्तार बढ़ाया जाए, उसकी उन्नति की जाए। इन छोटी छोटी रियासतों में हम लोगों को सिर्फ तकलीफ ही मिल सकती है। मेरी समझ में ये हमारे राज्य की

0: मजबूती का कारण हो नहीं सकता, अतएव उनको अपने राज्य में मिला लेने से इनसे होने वाली तकलीफें दूर हो जाएंगी और हमारे खजाने की बढ़ती भी हो सकेगी। ऐसा करने से उन रियासतों को हमारी राज्य प्रणाली का लाभ अवश्य होगा। मैं यह कह सकता हूं कि इसी में उन रियासतों की हर तरह की भलाई है। यह मेरी पक्की और विचार पूर्वक निश्चित राय है कि अपनी उचित और बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति से काम लेने से अंग्रेजी गवर्नमेंट का आवश्यकता कर्तव्य है कि मुल्क लेने में या आमदनी बढ़ाने के ऐसे उचित मौकों को आप समय समय पर हाथ आवे कभी ना छोड़ना चाहिए। ऐसे मौके चाहे इस समय पैदा हो कि रियासत किसी भी किस किस्म का हो, कोई वारिस ना हो, चाहे इस तरह की असली बारिश ना होने से अंग्रेज सरकार के इजाजत देने पर हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेकर कोई वारिस बनाया जा सकता है। उन दिनों मौकों को हाथ से निकल जाने देने की भूल कदापि ना करना चाहिए।
1: जिस समय बुंदेलखंड के पॉलिटिकल एजेंट मालकम साहब की रिपोर्ट भारत सरकार के पास पहुंची, उसी समय गवर्नर जनरल साहब अवध प्रांत में दौरे पर गए हुए थे। जब 4-5 महीने बीत गए और सरकार की ओर से कुछ जवाब नहीं आया, तब महारानी लक्ष्मीबाई ने एक खलीता मेजर एलिस साहब द्वारा भारत सरकार को भेजा। उसका सारांश यह था, इस प्रांत में ब्रिटिश सरकार का राज्य स्थापित होने से पहले हमारे ससुर शिवराज भाऊ ने सरकारी जो सहायता की थी वह झांसी के दफ्तर से प्रकट होती है। इस सहायता के बदले ब्रिटिश सरकार ने हमारे घराने पर जो कृपा दृष्टि की थी उससे हमारा सदा कल्याण हुआ है। सन 1842 ईस्वी में हमारे पति महाराज गंगाधर राव के साथ कर्नल सलीमन साहब ने जो संधि की थी उससे सन 1817 ईस्वी में रामचंद्र राव के साथ की हुई संधि की शर्तें रद्द नहीं की गईं, किंतु यह वचन दिया गया था कि वे सब शर्तें पूर्वता पाली जाएंगी और होने वाले सब फायदे झांसी राज्य को प्राप्त होंगे। शिवराव भाऊ के सौजन्य पूर्णता बर्ताव और ब्रिटिश सरकार के संबंध में उनके हृदय के अटल प्रेम की और ध्यान देकर उन्होंने अपनी मृत्यु के समय जो इच्छा प्रकट की थी कि झांसी का राज्य रामचंद्र राव को वंश पर परंपरा के लिए दिया जाए, उसे स्वीकार करने उक्त संधि की गई है। झांसी सरकार का प्रेम भाव और विश्वास दृढ़ करने के हेतु उक्त संधि से यह निश्चित हो चुका है कि रामचंद्र राव उनके वारिस और गद्दी सनी शिवराज भाऊ के राज के वंश परंपरा के स्वामी हैं। इसका अर्थ यही है कि स्वामी में मोक्ष प्रति के हेतु अपने पश्चात उत्तर क्रिया करने के लिए जो दत्तक पुत्र लिया जाएगा उसको ब्रिटिश सरकार मंजूर करे और उसके द्वारा घराने का नाम कायम रखे।
0: हिंदू शास्त्र के अनुसार मृत पिता को पिंड दान करने और उसकी श्राद्धी क्रिया करने का अधिकार औरस पुत्र के समान दत्तक पुत्र को ही है, इसलिए दत्तक लेने की रीति सारे भारतवर्ष में प्रचलित है। इसी रीति के अनुसार हमारे मृत पति ने 16 नवंबर को दीवान नरसिंह राव आपा लाला लाहोरीम तट्टी चंद्र अनेक सज्जनों के सम्मुख मुझे बुलाकर यह कहा गया कि मेरा स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ है और अब औषधियों से कुछ लाभ नहीं होता, अतएव गद्दी का वारिस होने के लिए अपने गोत्र के किसी योग्य बालक को हिंदू शास्त्र के अनुसार गोद लेने का मेरा विचार है।
1: तब उन्होंने रामचंद्र बाबा को बुलवाकर अपने गोत्र के अनेक बालकों में से वासुदेव राव के पुत्र आनंद राव नामक के 5 वर्ष बालक को पसंद किया। अतः विद्वान पंडितों और शास्त्रियों को बुलवाकर दत्तक विधान किया गया। दूसरे दिन सवेरे पंडित विनायक राव ने संकल्प पढ़ा और आनंद राव के पिता वासुदेव राव बने। यथाविधि पुनः दान किया गया। इस पुत्र का नाम दामोदर राव गंगाधर राव रखा गया और दत्तक विधि समाप्त की गई। महाराज की आज्ञा अनुसार मेजर एलिस और कप्तान मार्टिन साहब को दत्तक विधि के समय राजमहल में पधारने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया। उसके अनुसार वे दोनों 20 तारीख को 10 बजे राजमहल में आए थे। उस समय हमारे पति ने सरकार की इजाजत हासिल करने के लिए उनको एक खलीता दिया, जो वही पर पढ़कर उन्हें सुनाया गया था। मेजर एलिस साहब ने यह वचन दिया था कि महाराज की इच्छा अनुसार हम सरकार को सब हाल सूचित कर देंगे। दूसरे दिन अर्थात सोमवार तारीख 21 नवंबर को हमारे पति का देहांत हुआ। उनका सारा क्रियाक्रम दामोदर राव गंगाधर राव ही ने किया। इस बालक को हमारे पति ने ब्रिटिश सरकार की कृपा के अधीन किया है। अब उसकी रक्षा और पालन का भार उन्हीं पर है। सरकार से हमारी अंतिम प्रार्थना यह है कि जिस प्रकार दतिया के राजा परीक्षित, जालौन के बालाराम और ओरछा के तेज सिंह के लिए हुए दत्तक को सरकार ने मंजूर किया, उसी प्रकार इस दत्तक के लिए भी सरकार अपनी मंजूरी दे। झांसी के संधि पत्र में हमेशा शब्द का उपयोग किया गया है। यह शब्द उक्त राजाओं के संधि पत्रों में संयुक्त नहीं हुआ है। अतः उन राजाओं की अपेक्षा दत्तक लेने का हमारा हक अधिक है। यही खलीता गवर्नर जनरल साहब की सेवा में भेजा गया। महारानी लक्ष्मीबाई की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए झांसी के पॉलिटिकल एजेंट मेजर एलिस साहब ने तारीख 24 दिसंबर सन 1853 ईस्वी को एक पत्र में यह लिखा था कि जिस तरह ओरछा से राज्य के साथ हमने संधि की है, उसी तरह झांसी के राज्य के साथ भी की है। दोनों संधियों का आशय एक सा है। ऐसी अवस्था में एक राज्य को दत्तक की मंजूरी देना और दूसरे राज्य को ना देना उचित नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपने तारीख 27 मार्च सन 1836 ईस्वी के पत्र में यह स्वीकार किया है कि देसी राजाओं को दत्तक लेने का पूरा हक है। अब यदि यह बहाना किया जाए कि जिन घरानों को ब्रिटिश सरकार ने पूर्व सहायता के बदले राजपद पर चढ़ाया है, वे अन्य घरानों के समान प्राचीन नहीं हैं, और यदि इसी बहाने से उनका कबूल ना किया जाए तो मेरी राय में यह बात डायरेक्टर की आज्ञा के विरुद्ध और उनकी उदारता का नाश करने के समान है। परंतु यह पत्र बुंदेलखंड के एजेंट दफ्तर में ही बहुत दिनों तक पड़ा रहा। झांसी की गद्दी खाली देखकर गंगाधर राव के प्राचीन निवास स्थान खानदेश के रहने वाले भाई बंधुओं में से सदा शिव राव नारायण नाम के किसी एक मनुष्य ने झांसी का राज पाने के लिए मेजर मालकन साहब को एक प्रार्थना पत्र भेजा। इस प्रार्थना पत्र को गवर्नर जनरल की सेवा में भेजते समय तारीख 31 दिसंबर 1853 ईस्वी को मालकम साहब ने अपनी सिफारिशी चिट्ठी में यह लिखा है
0: कि यदि मृत राजा के पुरखों के किसी वारिस का हक कबूल करना होता है, यह मनुष्य सबसे ज्यादा नजदीकी का रिश्तेदार है जो गद्दी पाने का हकदार हो सकता है। जब सन 1854 ईस्वी के फरवरी महीने में लॉर्ड डलहौजी साहब दौरे से कलकत्ते को लौट आए, तब झांसी राज्य का विचार आरंभ हुआ। भारत सरकार ने पर राज्य समधि सचिव मिस्टर जेपी ग्रंट साहब ने झांसी राज्य की एक बहुत ही बड़ी मिसाल तैयार की। उसमें झांसी राज्य की प्राचीनता और उसके साथ ब्रिटिश सरकार के संबंध का संक्षिप्त इतिहास देकर इसी बात पर जोर दिया गया था कि झांसी का राज अंग्रेजों राज्य में मिला दिया जाए। इस पर वाद विवाद करके लाट साहब और उनके काउंसलर लोगों ने निश्चय किया कि वह

0: यह है कि झांसी महाराज गंगाधर राव देहांत 1853 ईस्वी नवंबर मास में के अंत में हुआ। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने मृत्यु के दिन पहले एक लड़के को दत्तक लिया। महाराज गंगाधर राव की स्त्री महारानी लक्ष्मीबाई यह प्रार्थना करती है कि भारत सरकार उक्त दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का वारस कबूल करे। सेक्रेटरी ने झांसी राज्य का जो संक्षिप्त वृत्तांत लिखा है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि ब्रिटिश सरकार और झांसी राज्य का संबंध किस प्रकार का है। इस बात पर विचार पूर्वक ध्यान देकर और झांसी राज्य के साथ पहले से ही जो हमारा पत्र व्यवहार हुआ है उस पर ध्यान देकर मैं इस विषय पर अपनी सम्मति प्रकट करता हूं कि झांसी के राजा साहब के अधीन जो प्रांत था उसकी उचित व्यवस्था किस प्रकार की जानी चाहिए।
1: मेरी यह राय है कि इस प्रांत का स्थित्व ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया है। उस स्थित्व को ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहने देना ही हक और राजनीति की दृष्टि से उचित होगा। जिन सिद्धांतों के अनुसार झांसी राज्य की व्यवस्था की जानी चाहिए उसका पूरा पूरा विचार हाल ही में नागपुर और टिहरी के राज्यों के संबंध में वाद विवाद करते समय किया जा चुका है। बुंदेलखंड की छोटी छोटी रियासतों के विषय में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ साहब ने जो नियम बतलाया है और जिसको सरकार ने सन 1837 ईस्वी में स्वीकार कर लिया है, उस पर ध्यान देने से और आश्रित राज्यों के विषय में सन 1846 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो नियम निर्धारित किया है उस पर विचार करने से यही निश्चित होता है कि झांसी राज्य को लावारिस समझकर अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का हमको पूर्ण अधिकार है।
0: जिस लेख में उक्त सिद्धांतों का वर्णन है उसको मैं बता देना चाहता हूं कि कोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ने यह स्पष्ट रीति से कहा है कि यदि भारतवर्ष में सब साधारण नियम और रूढ़ी के अनुसार जो रियायतें सतारा राज्य के समान स्वतंत्र नहीं है, उनका स्वामित्व सार्वभौम सरकार की अनुमति के बिना किसी दत्तक वारिस को प्राप्त नहीं हो सकता। यह इस प्रकार की अनुमति देने के लिए हम प्रत्यज्ञ या अप्रत्यक्ष रीति से किसी प्रकार के वचन से बद्ध नहीं है, और जब इस प्रकार की अनुमति दी ना जाएगी तभी ऐसा समझा जाएगा कि हमने अपने कब्जे में आए हुए प्रांत की भलाई की और उचित ध्यान दिया है। बुंदेलखंड राजाओं के विषय में सर चार्ल्स मेटकॉफ साहब लिखते हैं कि प्रश्न यह है कि क्या जिनकी जिनकी और संतान नहीं है वे दत्तक लेकर अन्य वारसों का हक या जब कोई वारस ना हो तो सार्वभौम सरकार को प्राप्त होने वाला हक मार सकते हैं। क्या सरकार इस प्रकार के दत्तक को स्वीकार करने के लिए बाध्य है? इस प्रश्न का निर्णय करते समय ऐसे राजाओं में जो वंश परंपरागत गद्दी के हकदार हैं और उन जागीरदारों में जिन्होंने उक्त राजाओं से या सार्वभौम सरकार की ओर से जागीर मिली है जो भेद है उस पर फ्रेजर साहब ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए मेरी यह राय है कि यदि हिंदू राजाओं की औरत संतान ना हो तो उन्हें दत्तक लेने का हक है, और ऐसे दत्तक को यदि वह हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हो तो ब्रिटिश सरकार अवश्य मंजूर करे।
1: अब जिन जागीरदारों को राज्य की ओर से जागीर मिली हो उनके अधिकारी, उनके उत्तराधिकारी नियत करने का अधिकार उन्हीं राजाओं को जिन्होंने जागीर प्रदान की थी या जागीर दान की शर्तों के अनुसार उन लोगों को है जिन्होंने युद्ध करके या अन्य किसी तरह से उन जागीरदारों के हक स्वयं अपने अधीन कर लिए हैं। इन शर्तों को खास मतलब यही रहता है कि औरस संतान के सिवा दत्तक पुत्र या अन्य कोई वारिस ना हो। अतः ऐसे मामलों में राजाओं ने जागीर प्रदान की है उन्हें या उनके स्थान में स्थापित होने वाले अन्य राज्य अधिकारियों को यह अधिकार है कि जब कोई जागीर और से पुत्र न होने से लावारिस हो जाए तब वे उसको वापस ले लें। झांसी का राज्य सतारा के समान की बहुना उससे भी अधिक आश्रित है। वह सार्वभौमित्व के नाते से ब्रिटिश सरकार के दिए हुए इनाम के तौर पर एक जागीरदार के कब्जे में था, अतः औरस पुत्र ना होने से उसको वापस लेने का अधिकार ब्रिटिश सरकार का है।
0: यह बात निर्वितवाद सिद्ध है कि झांसी का राज आश्रित है, वह स्वतंत्र राज कभी नहीं था। इतना ही नहीं, किंतु टहरी का राज जितना स्वतंत्र माना जाता है उतना ही वह नहीं है। वस्तुतः झांसी टहरी का भी यह भाग है जिनको टहरी के प्रधान स्वामी पेशवा ने किसी एक सूबेदार को सौंप दिया था। और साथियों, अब चर्चा चूंकि बहुत हो चुकी है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम अपने साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं, और झांसी का वृत्तांत जो है काफी बड़ा है, और ऐसे वृत्तांत को सुनने का मजा ही कुछ और है। तो साथियों, इस बात को जरूर मानिएगा कि जो हम बात बता रहे हैं वो वास्तव में पिछले जो हमने देखी भी नहीं, हमारे पुरखों ने भी नहीं देखी, वो बातें हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से साझा कर रहे हैं।
1: साथियों, इसमें मानते हैं कि कुछ गलतियां भी जरूर होंगी, तो आप उन गलतियों को नजरअंदाज कर शब्दों पे ना जाकर भावनाओं पे जाने का प्रयास करें। हमें आपसे यही उम्मीद थी। आज का ये कार्यक्रम का तीसरा अध्याय अपना चल रहा है। इस कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बातें आपको समझ में आई, हमें जरूर लिख दीजिए हमारे इस पते पर या फिर हमारे फोन नंबर पर। हमारा पता है
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा के पास ओरछा।
1: साथियों, हमारा मोबाइल नंबर है
0: 9219207749।
1: आज की कार्यक्रम बातें छोटे पर्दे की से जाने की दीजिए हमें इजाजत।
0: आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।

0: रूपी साजिश
1: या ससुर जी का दुलार,
0: ननद जी से हो नोकझोंक
1: या देवर का प्यार, इन सभी बातों को समेट कर लाया
0: आपका अपना कार्यक्रम
1: बातें छोटे पर्दे।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबीरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे ही कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आपके लाने जो कार्यक्रम खेत खलियान। खेत खलियान कार्यक्रम में आज अपन बात करें टमाटर की खेती की। टमाटर की ये किस्में देंगी एक एकड़ में 500 क्विंटल की पैदावार, जबरदस्त मुनाफा। दोस्तों, नवंबर में तैयार करें नर्सरी और पाएं भरपूर उत्पादन। जाने कौन सी है ये किस्में और इसकी विशेषताएं और लाभ। सो साथियों, टमाटर की उन्नत किस्में जानबे से पहले अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। ये गीत के बाद फिर अपन टमाटर की उन्नत किस्मन की बात करें और जाने के जी किस्में हमें कितनी पैदावार दे सकती हैं। सो आओ सुन लेते हैं बढ़िया से गीत को, लेते हैं गीत को आनंद। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राज जी।

गई थी कहां धनिया डारी किते कर धनिया। देखो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो। ये गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। दोस्तों आलू प्याज के बाद यदि कोई सब्जी का जिक्र किया जाता है तो वह है टमाटर। टमाटर का प्रयोग एकल व अन्य सब्जियों का जायका बढ़ाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा त्वचा की देखभाल में भी टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर में कैरोटीन नामक वर्णक होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन पोटेशियम के अलावा कई प्रकार के खनिज तत्व मौजूद होते हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। भारत में इसकी खेती राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। आजकल तो 12 महीने बाजार में टमाटर की बिक्री होती है, इस लिहाजे से टमाटर की खेती लाभ का सौदा हो रही है। यदि टमाटर की खेती के लिए उन्नत व अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का चयन किया जाए तो इससे काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। आइए जानते हैं टमाटर की अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्में और इसकी खेती से जुड़ी आवश्यक बातों के बारे में। साथियों टमाटर की देसी किस्में पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। टमाटर की हाइब्रिड किस्में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। भारत में टमाटर की खेती करने वाले किसानों के बीच

0: की अर्का रक्षक किस्म काफी लोकप्रिय हो रही है। इसकी वजह से ये है कि एक तरफ तो इस किस्म से बम्फर पैदावार मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसमें टमाटर में लगने वाले प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता अन्य किस्मों से अधिक है। साथ ही अर्का रक्षक का फल काफी आकर्षक और बाजार की मांग के अनुसार होता है, इसलिए किसानों का रुझान इस किस्म की ओर बढ़ रहा है। क्या है अर्का रक्षक किस्म की विशेषता है? दोस्तों, यह किस्म भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुर की ओर से वर्ष 2010 में इजाद की गई थी। संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक और सब्जी फसल डिवीजन के प्रमुख एटी सदाशिव का कहना है कि यह भारत की पहली ऐसी किस्म है जो त्रिगुण रोग प्रतिरोधक होती है। इसमें पत्ती मोड़क विषाणु जीवाणु झुलसा और अगेती अंगमारी जैसे रोगों से लड़ने की क्षमता है। वहीं इसके फल का आकार गोल बड़े गहरे लाल और ठोस होता है। वहीं फलों का वजन 90 से 100 ग्राम तक होता है जो बाजार की मांग के अनुकूल है। एक एकड़ में होती है 500 क्विंटल पैदावार। डॉक्टर सदाशिव के अनुसार टमाटर की इस किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में कम लागत आती है जबकि मुनाफा जबरदस्त होता है। इसकी फसल 150 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार के मामले में यह टमाटर की अन्य किस्मों की तुलना में अधिक उत्पादन देने वाली है। इससे प्रति हेक्टेयर 190 टन का उत्पादन किया जा सकता है। वहीं प्रति एकड़ 45 से 50 टन का उत्पादन होता है। प्रति क्विंटल के हिसाब से उत्पादन देखें तो एक एकड़ में टमाटर की बुआई करने पर 500 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। वहीं अन्य किस्मों से काफी कम पैदावार प्राप्त होती है। टमाटर की बुआई का सही समय। दोस्तों, जनवरी में टमाटर के पौधे की रोपाई के लिए किसान नवंबर माह के अंत में टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पौधे की रोपाई जनवरी के दूसरे सप्ताह में करना चाहिए। यदि आप सितंबर में इसकी रोपाई करना चाहते हैं तो इसकी नर्सरी जुलाई के अंत में तैयार करें। पौधे की बुआई अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में करें। मई में इसकी रोपाई के लिए मार्च और अप्रैल माह में नर्सरी तैयार करें। पौधे की बुआई अप्रैल और मई माह में करें। टमाटर की पौध कैसे तैयार करें? खेत में रोपने से पहले टमाटर के पौध नर्सरी में तैयार किए जाते हैं। इसके लिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 से 15 सेंटीमीटर उठी हुई बनाना चाहिए। इससे नर्सरी में पानी नहीं ठहरता है। वहीं निराई गुड़ाई भी अच्छी तरह से हो जाती है। बीज को नर्सरी में 4 सेंटीमीटर की गहराई से बोना चाहिए। टमाटर के बीजों की बुआई करने के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बीज की नर्सरी में बुआई से पहले 2 ग्राम केंटान से उपचारित करना चाहिए। वहीं खेत में 8 से 10 ग्राम कार्बोफ्रान 3 जी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से डालना चाहिए। टमाटर के पौधे जब 5 सप्ताह बाद 10 से 15 सेंटीमीटर के हो जाएं तब इन्हें खेत में बोना चाहिए। यदि आप एक एकड़ में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए टमाटर के 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। टमाटर की फसल में ध्यान रखने वाली बातें। दोस्तों, टमाटर की फसल के लिए काली दोमट मिट्टी, रेतीली दोमट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। वैसे टमाटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। हल्की मिट्टी में भी टमाटर की खेती अच्छी होती है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच मान 7 से 8.5 होना चाहिए क्योंकि इसमें मध्यम अम्लीय और लवणीय मिट्टी को सहन करने की क्षमता होती है। विभिन्न कीटों और मृदा जनित रोगों से बचने के लिए बीज को 3 ग्राम थायरम या 3 ग्राम कार्बिजेंडा से उपचारित करें। यदि आपने टमाटर की फसल गर्मियों के दिनों में लगाई है तो 6 से 7 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। यदि आप सर्दियों में टमाटर की फसल ले रहे हैं तो 10 से 15 दिन के अंतर में सिंचाई करना पर्याप्त है। टमाटर की अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना जरूरी है। टमाटर की खेती का तरीका। खेत को 3 से 4 बार जोतकर अच्छी तरह से तैयार कर लें। पहली जुताई जुलाई माह में मिट्टी पलटने वाले हल अथवा देसी हल से करें। खेत की जुताई के बाद समतल करें। 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी गोबर की खाद को समान रूप से खेत में बिखेर कर पुनः अच्छी तरह जुताई करें और घास पात को पूर्ण रूप से हटा दें। इसके बाद टमाटर की पौध को 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी लेते हुए रोपाई करें। खाद एवं उर्वरक। उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। किसी कारण से अगर मिट्टी का जांच संभव ना हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर नत्रजन 100 किलोग्राम, स्फुर 80 किलोग्राम, पोटाश 60 किलोग्राम की दर से डालना चाहिए। एक तिहाई नत्रजन, स्फुर और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर प्रतिरोपण से पूर्व मिट्टी में बिखेर कर अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। शेष नत्रजन को बराबर भागों में बांटकर प्रतिरोपण के 25 से 30 और 45 से 50 दिन बाद ऊपरी बेसन के रूप में डालकर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। जब फूल और फल आने शुरू हो जाएं, उस स्थिति में 0 से 4, 0 से 5% यूरिया के घोल का छिड़काव करना चाहिए, लेकिन सांद्रता पर काफी ध्यान देना चाहिए। अधिक सांद्र होने पर छिड़काव से फलों की पूरी बर्बादी होने की संभावना रहती है। वहीं हल्की संरचना वाली मृदाओं में फल फटने की संभावनाएं रहती हैं। प्रतिरोपण के समय 20 से 25 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में भली भांति मिला दें। फलों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 0 से 3% बोरेक्स का घोल फल आने पर 3 से 4 छिड़काव करना चाहिए। पाला व लू से टमाटर की फसल की सुरक्षा। टमाटर की पौध के प्रतिरोपण के तुरंत बाद सिंचाई आवश्यक करनी चाहिए। इसके बाद 15 से 20 दिनों के अंतराल में सिंचाई की जा सकती है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला व गर्मियों में लू से बचाना बेहद जरूरी होता है। टमाटर की फसल को जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू से बचाना केवल 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए ताकि खेत में नमी बनी रहे। इससे जाड़े में पाला तथा गर्मी में लू का प्रकोप कम होगा, जिससे टमाटर की फसल को सुरक्षा मिलेगी और उत्पादन पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें खरपतवार नियंत्रण की। कई खेतों में खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए लासो 2 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रतिरोपण से पूर्व डालना चाहिए। वहीं रोपण के 4 से 5 दिन बाद स्टाम्प 1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे उपज पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है। सो देखो दोस्तों, जहाँ अपन ने आज बात करी है टमाटर की उन्नत खेती की। सो दोस्तों, अब एक क्रम में अपन और कह रही है कि माता दिन भैया बहुत देर से टमाटर के बारे में बात कर रहे हैं, मनोरंजन की तरफ कोनो ध्यान नहीं दे रहे। सो आओ दोस्तों, मनोरंजन के लाने अपन सुनत ही बढ़िया से गीत खोल लेते हैं, गीत को आनंद। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुन लेते हैं गीत को।
1: जी गीत को गा रहे हैं रामकिशोर प्रजापति जी।

लर परी तुमैया तुमा से पंचन में देत उरानो। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है। गीत को गा रहे थे रामकिशोर प्रजापति जी। अब दोस्तों रामकिशोर प्रजापति भैया जी के गीत के बाद हम आपको बता देंगे कि आज के कार्यक्रम खेत खलियान को इतना ही समापन होबे को समय हो गए है। सो अपने दोस्त माता दिन भैया को दो कार्यक्रम से जावे की अनुमति। अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आपने इबीरा अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली खो। और दोस्तों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में अपन एक गायक कलाकार से भी बात करते हैं और कछु विधा के अनुसार अपन गीतन को भी सुनते हैं। तो दोस्तों, इमें अपन आज पहला तो मिले भैया बाबूलाल कुशवाहा जी से और उनसे जाने के उनने गाबो बजाबो कैसे सीखो है, काका विधान जी गाउत हैं। और दोस्तों, एक के संगे संगे देखो अपने जो भारतीय परंपरा में नवदुर्गन को त्यौहार मानो जाते, वो त्यौहार भी अपनो आ रहा है, बिल्कुल नियर है, आगो है। तो दोस्तों, अपन को त्यौहार में भी गाउत बजाउत हैं, तो ऊ त्यौहार में जो देवी गीत अपन गाउत हैं वह देवी विधा को आउत है, तो ऊ देवी विधा के गीत भी अपन आज ही कार्यक्रम में सुने और भैया बाबूलाल से भी उनकी जुबानी को सुने। तो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली को। लेकिन दोस्तों, बाबूलाल जी से मिलवे से पहले अपन सुनत हैं एक बढ़िया से गीत को और गीत को आनंद आप और लो और हम सो लें। तो दोस्तों, आज सुनत हैं सबसे पहला तो एक गीत को और गीत को आनंद लेते हैं।

कैलाश के ऊपर सर शंकर तर पारी कच ब्रज तर धूनी रमाए बैठे आ संडारी।

0: में गंग विराजी सोहे चंद लिलारी
1: बारे प्यारे
0: नांग काली क्या गरे में डारे डूड़ा बैल सवारी तुम्हारी महिमा बड़ी मेरा।

जो भांग धतूरा खावे अजब लगावे तारी। निर्गुण सुरगुण निराकार में नाम तुम्हारो भारी। भगवान दास कहे।

बिल्कुल दोस्तों, मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो दोस्तों, कितना प्यारो गीत अपन सब जन ने सुनो है और गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया बाबूलाल कुशवाहा जी। तो साथियों, बाबूलाल कुशवाहा जी के गीत के बाद अब बाबूलाल जी से बात भी करते हैं कि भाई कैसे गावो बजावो इनने सीखो है और कैसे कैसे इनने काका गाओ है। तो दोस्तों, बाबूलाल कुशवाहा जी से आओ अपन मिलते हैं ये छोटे से संदेश के बाद।

0: अच्छा भैया पहला तो आप अपना नाम बताओ।
1: बाबूलाल कुशवाहा।
0: बाबूलाल कुशवाहा कहाँ से हैं अपन?
1: बासवान
0: चताव से बाबूलाल जी। अच्छा बाबूलाल जी आप जा बताओ कि आपने जो गा वो कहाँ से सीखो? तो
1: हमने हमारे बूढ़े पुराने हैं थे पहले के, तो वो था पहले से
0: भजन जी वो था आपके थे। अच्छा तो आपने उन्हीं से सीख लो जो अशोक
1: पहले बैठा था डाटा दूर
0: हाँ दूर दूर
1: कई गुस्सा ना हो पाए नहीं। फिर उन्होंने कहा तो मैं सीखने हमने हाँ तो उन्होंने फिर बजवाओ घुमवाओ।
0: अच्छा तो आपको जो पता है कि आप जब कितने साल की हुई हो जब आपने सीखो है? जो
1: हुई हम 15-16 साल की।
0: तो आपको अच्छी ले हती मतलब गावे की
1: ले हती?
0: तो जैसे आपने 15-16 साल के हते हो और आप जैसे ये होते भजन वजन तो आप उनके करके उनके बैठन लगे थे तो जो भजन का डेली होते क्या है कहूँ कहूँ होते ऐसे
1: जैसे ब्याह माई करी आदमी ने बैठ गए रोई होते पहले तो।
0: अच्छा
1: अगर रिश्तेदार आ गए तो कही आज वहाँ जो होने होने है।
0: अच्छा
1: अच्छी ले लगी
0: हाँ फिर तो मैं ले बढ़त गई। फिर तुमने सबसे पहला कहा गाओ तो कछु ऐसी आप याद हो बे बादन की जब आपने सबसे पहला शुरुआत करी थी गावे की तो का चीज गाई?
1: हमने गाओ कछु नहीं
0: हाँ
1: वो तो जैसे आपने गाओ
0: हाँ सो हमने उठो संगे लो वाला
1: आपने कह गया हम तुमको बोलो
0: हाँ
1: ऐसे ऐसे सीख गए।
0: अच्छा मतलब गावे वाले ने उठा दो फिर आप तुम साइड में बोलो
1: हाँ पहले शेर पसी को एक दूसरे से
0: हाँ
1: फिर उन्हें सकाओ का जाप गाना तो नहीं आओ
0: हाँ
1: सुनने के सुनाओ
0: हाँ
1: ऐसे ऐसे गावो
0: गावो सीख गए
1: सब चाहे थे पार्टियां में चले जा।
0: अच्छा अच्छी बात है देखो तो आपको कितनी है जब लगन से हो सब
1: हो लगन से
0: है कि नहीं जब जी आदमी
1: हमें एक लगन है कि ब्याह है तो हम एक साल घर नहीं।
0: अच्छा मतलब ब्याह आपको होगा तो
1: हाँ वो घर नहीं आए एक साल हम
0: एक साल आप घर नहीं आए तो कहाँ गए थे आप?
1: मैं जो सिखाओ तो उनके संगे रहा ले जाए।
0: अच्छा आपको घर से कोई मतलब नहीं ले बताओ लेकिन अब आजकल के लड़का नहीं है ऐसे बेकच्चा हमें कुछ सिखाया चाहे हमें कछु नहीं सीख रहे हमें तो घर रहना
1: नहीं कहते रोटी खाई हमने।
0: अच्छा
1: वो तो ही रहे।
0: अच्छा को गाओ तो आपके तो जो ऐसे हते
1: हमारे
0: संगे सीखते
1: चार से हते परिवार के
0: हाँ
1: हाल कुशवाहा गुजर गए अब।
0: अच्छा
1: हाँ गुरु की हती
0: तो गाँव था सारंगी बजाते हुए का
1: हो सारंगी
0: तो बे गाँव तो सारंगी बजाते हुए तुम तो फिर उन्हीं के संगे लग गए
1: बस
0: घर से कोई मतलब नहीं। अच्छा शादी क्या साल की हती जब आपकी हो गई थी?
1: शादी हुई थी 18 साल में।
0: तो देखो आपको जब लगन लगी लगन में आपने ना तो शादी देखी ना घर देखो ना कछु आपको तो अपनो मंजिल लिखा रही थी कि हमें जो काम करने वो करने
1: सीखने सीखने गाँव बजाओ
0: है। तो देखो एक लगन हो जी
1: अब यही तो अपनो साजबाज
0: हाँ
1: आप बूढ़े पानों का रखे हैं अपने।
0: अच्छा तो इस साजबाज में काका हो काका है बजावे वाओ
1: सारंगी है खंजड़ी है जे झाने हैं।
0: अच्छा
1: झीका है
0: जे चीजें बजाते हैं आपके तो आप देखो भाई जो पुराने चलन के ये बाजे हैं जे अब भी आप संभाल के रखे हैं तरीका से
1: अगर फूट जाए तो हम उन्हें मर भी ले
0: मरवाब की जरूरत नहीं है को मर पाते ना क्या नहीं जैसे खुद ही मर नहीं आती तो
1: नहीं हमने खुद ही सीखा उन्हें सब सिखा था हमें।
0: अच्छा
1: हाँ गुरु जी ने
0: हाँ
1: गावो बजावो और बनावो सब
0: कि अगर जब फूट जाए तो यही से मर लो। अच्छा का ऐसे मरता अगर फूट जाए तो
1: जैसे जो बकरा की खा ले बकज्जा की
0: हाँ
1: वो जाता जाना बढ़ जाए गोवा मिल जाए।
0: अच्छा
1: गोवा की वह बढ़ जाए बोला
0: हाँ
1: की दाल बांट के।
0: अच्छा
1: और उसे घी से लगा दो कड़ाई बना के जो जाएगी रस्सी की
0: हाँ
1: दो तीन आदमी तेरे को चढ़वा दो डांट के।
0: अच्छा
1: दूध ना चढ़ियन दी
0: ले साहब तो इको फेविकोल भी नहीं चाहने?
1: हाँ हाँ फेविकोल तो फेरे हुआ था इधर के सामने।
0: अच्छा जयते के जाना काम करत? चलो भैया तो देखो आपने कितनी अच्छी बात अपने साथी में बताई। तो जब आपने का कोत के सीखो जो सब काम तो जब से आप तो उन्हीं के संगे लगे रहे
1: हो लगाई जाए बिल्कुल
0: है
1: काम करो घर करो रात
0: हाँ।
1: होने से कर गए।
0: अच्छा घर से कोई मतलब हाँ। नहीं रहो। चलो भैया जी तो देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई बस जी आदमी को जी की लगन लग जाए वो आदमी वो काम करके होगा
1: रुकता ही है ए? ये दागा हो
0: हाँ
1: नन्ना गए लोहावे।
0: अच्छा किए लोहावे गए
1: घर
0: बहुत हो
1: हाँ सो हाँ भज्जी बोले के कहे तो आप तो जाना नहीं भजन में
0: घर
1: कहते तुम्हें नहीं जाने
0: हाँ
1: हम नहीं जाने तो है
0: हाँ
1: बोले मां नहीं जाने
0: हाँ
1: लगा सावन
0: हाँ
1: लगाई नहीं आप संगे भाग गए
0: ले साहब
1: 3 दिन रोटी थी
0: ओहो। तो ये तो जब की बात है जब आपको लगन लगी थी, लेकिन अब के लड़का भाई आज का बेकत के हमें तो नन्ना को इंतजार है कब आ रहे। चलो भैया बाबूलाल जी आपने इतनी अच्छी बातचीत करी अपने साथियों से ही खिलाने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ देखो साथियों जी तो हते भैया बाबूलाल जी, और बाबूलाल जी ने अपनी पूरी कहानी बता दी है कि हमने कैसे गावो बजावो सीखो है, कितनी मुश्किल से सीख पाओ और काका गाऊ थे। और दोस्तों एक संग है, अगर आप और भी गाऊ थे बजाऊ थे और अपनी बात को हम तक रखवा चाह रहे रेडियो से बतावो चाह रहे तो आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते। दोस्तों हमारा संपर्क नंबर है इस प्रकार से 0-75-25-84-81-11। साथियों जो नंबर लगा के आप हमसे सीधी बात कर सकते के माता दिन भैया हम जो कार्यक्रम गाउत हैं जो देते हैं और जा विधाकों भी गाउत हैं। तो दोस्तों एक विधाकों अपन उजागर कर भी के लाने और साथियों तक पहुँचा भी के लाने और आदमी ये सुन के सीख सकें, ई के लाने आप हमसे जरूर संपर्क करें कि आप कैसे नजा आपने सीखी है और काका आप गाउत हैं। तो दोस्तों हमने आपको नंबर बताई दो और ई नंबर पे आप फोन लगा के हमसे सीधी बात कर सकत। और दोस्तों अब एक क्रम में अपन देखो कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ भाई, कार्यक्रम में सुना थे कछु गीतन को और गीतन को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।

देखो साथियों, जो कितनों बढ़िया देवी गीत अपन सब जन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद रहो है। और दोस्तों ये गीत को गाए थे भैया भगवान दास पिपरिया वाले। तो साथियों भगवान दास जी के देवी गीत के बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। तो है कार्यक्रम में और सुनते हैं एक और बढ़िया से गीत को और लेते हैं गीत को आनंद। तो दोस्तों आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में। तो आओ दोस्तों सुनते हैं ये प्यारे से गीत को।

बिल्कुल साथियों, तुम बिन काज बने ना देव दर्शन मां बिराज मोरे अंगना। देखो दोस्तों, कितनो प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ये देवी गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं अपन एक और बढ़िया से देवी गीत को और वो गीत को आनंद लेते हैं। तो साथियों आप ऐसे सुनते रहो जो कार्यक्रम विधा बुंदेली खो अपने दोस्त माता दिन के संग में।

बिल्कुल दोस्तों, सब पे कृपा राखियो होमा। देखो दोस्तों, कितना प्यारो जो देवी गीत अपन सब जनन ने सुनो है और ई गीत को आनंद लाओ है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे भैया हरी राम जी। तो साथियों, अब हरी राम जी के ही गीत के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ही कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दीन जी को जावे को समय हो गया है। तो अपने दोस्त को दे ई कार्यक्रम से जावे की अनुमति और अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

अब करो भरोसा हर पे, अब करो भरोसा हर पे, करो भरोसा हर पे, ना करियो अपने घर पे।

राजा रंक सबई के लाने उसे न चल है एक बहाने दीने जन्म लो सो जाने राजा रंक सबई के

नहीं जात वह हाट बाजार, नहीं जात है मेला, वही जात है हाट बाजार, वही जात है हाट बाजार

0: करियो ना हैरान कर पे करन दोला के
1: अरे सीधे पने को।

अभिमान करो ना प्यारे, मद अभिमान करो ना प्यारे।

você!

0: कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है और पदचिन्ह बनाने वाला ही इस जग में पूजा जाता है। सभी श्रोता साथियों का आपके अपने रेडियो साथी मनीष
2: और आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे आज सफल कहानी को लेकर नंदिनी दीक्षित जी से। जी हाँ श्रोताओं, तो अब देर नहीं करते हैं क्योंकि ऐसी ही एक कहानी हमारे बीच में आज फिर से मौजूद है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बहुत अच्छा कार्य किया है। तो हम देर नहीं करते हैं, आप सभी को ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास।
1: और नंदिनी दीक्षित जी से हम जानते हैं कि किस तरीके से वो कामयाब होती चली गई और आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। आज उनसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। तो आइए आपको सीधा ले चलते हैं नंदिनी दीक्षित जी के पास, उनकी कहानी को हम जानते हैं कि किस तरीके से पर्यावरण संरक्षण को लेकर उन्होंने कार्य किया है। तो आइए सुनते हैं नंदिनी जी को, जिनसे बात कर रहे हैं शशांक दुबे जी, एजुकेशन ऑफिसर हैं। तो आइए इनकी वार्ता को हम सुनते हैं।
2: साथियों, नंदिनी दीक्षित जी से हम आगे बातचीत जरूर करेंगे, उनकी कहानी को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम किया हुआ है अपने क्षेत्र में और काफी काम वो अभी भी कर रही हैं। जहां पर वो पढ़ाई कर रही हैं वहां पर भी वो पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही हैं लगातार। तो उनसे हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर हम एक छोटा सा लोकगीत सुन लेते हैं पर्यावरण से जुड़ा हुआ, उसके बाद लौट के आते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।
3: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है।

0: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार धरती माँ की यही पुकार।
1: श्रोताओं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में अबे अपन ने सुनो ये प्यारे से लोकगीत खो जी खो गा रहे थे बालिक दास कुशवाहा और उनके साथी। और अब हम देर नहीं कर रहेंगे आपको ले चलेंगे सीधे नंदिनी दीक्षित जी के पास जिसे बातचीत कर रहेंगे शशांक जी और उनसे जानेंगे कि कैसे वे प्रेरित भई थी कौन तरह से उनने पर्यावरण को समझो और फिर उनके बाद वे काम करने लगी पर्यावरण को लेके। तो आओ उन्हीं से सुना थेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
0: नंदिनी जी
2: नमस्ते।
0: नंदिनी जी हमारे साथ जो आज लिसनर्स जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, क्या आप उनको अपना नाम और उस जगह के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं जहां आप बड़े हुए हैं?
2: तो देखिए मेरा नाम है नंदिनी दीक्षित और मैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली नगर की निवासी हूँ और मैं बेसिकली अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में बीटेक की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं बेसिकली तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, कानपुर से हूँ मैं, बट हम यहाँ शिफ्ट कर रहे थे दंतेवाड़ा बचेली में एंड बचेली इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो नेचर से काफी कनेक्टेड है वो जगह।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। नंदिनी जी आपने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जो कार्य करे हैं उसकी शुरुआत किस जगह से करी थी और क्या क्या कार्य आपने संरक्षण के प्रति करे हैं?
2: एक्चुअली मेरे डैड पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे थे तो वो एक उन्होंने 26 जुलाई 2019 को एक वन वर्ग की शुरुआत की थी, उस वन का नाम अमोद अरण्य है और इसको हमने कारगिल दिवस पर कारगिल योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने के रूप में की थी। हम बैरन लैंड पे प्लांट्स लगा रहे थे और उन्हीं से मैं इंस्पायर होके मैं खुद एक कैंपेन चलाती हूँ एक पेड़ शहीदों के नाम, जिसके तहत मैं हर महीने की 19 से 25 तारीख को शहीदों के नाम पे पौधारोपण करती हूँ। तो इसी के साथ हम स्टूडेंट्स के लिए भी कैंपेन चलाते हैं, हम स्टूडेंट्स को बेसिकली हम नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज वो यूथ है और यूथ हमारे फ्यूचर जनरेशन को किस तरीके से अच्छे से, हमारे फ्यूचर जनरेशन है वो, तो वो अच्छे से पर्यावरण को समझे और उसके लिए कार्य करें, तो उनके लिए हम कैंपेन्स चलाते हैं, हम डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाते हैं और इसी के साथ हम जैसे प्लास्टिक के लिए भी कैंपेन चलाते हैं इको ब्रिक्स बनाने। और यहाँ पे जैसे बचेली में हमारे कैंपेन से काफी घर ऐसे हैं जो अपना घर का प्लास्टिक घर में ही रखते हैं, तो बेसिकली अपने फादर से मैंने इंस्पायर होके ये चीजों की शुरुआत की थी एंड होपफुली ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम और आगे भी करते रहेंगे।
0: तो जो आप युवाओं के लिए उनको प्रेरित करते हैं कि वो पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण की हर चीज को बारीकी से समझें, इसमें आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया है?
2: तो सबसे बड़ी चुनौती जो मैंने फेस की है वो क्योंकि मैं एक सिंगल गर्ल चाइल्ड हूँ तो मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, दे ऑलवेज सपोर्ट मी, जो मुझे करना है वो मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, वो हमेशा मुझे प्रेरित करती कि नहीं आपको ये करना है आप कीजिए, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं आता था, पीपल वे लाइक कि आप मतलब एक आपकी बेटी आप ऐसा इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, इस लाइन में क्यों डाल रहे हैं, तो ये चीज तो थी, साथ में रिस्पॉन्स बहुत कम आता था, लोग उतना मतलब लाइक इतना इस चीजों पर्यावरण और ये सब चीजें इतनी सीरियसली लेते नहीं थे। तो अभी भी मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं पूरा ओवरकम कर गई हूँ इन सब चीजों से, बट काफी हद तक हमने लोगों को प्रेरित किया है और उनको पर्यावरण से जोड़ने की कोशिश की है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया नंदिनी जी। सो आज जो हमारे साथ लिसनर्स जो जुड़े हुए हैं इस रेडियो चैनल के माध्यम से, जो युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के अनुसार उनके लिए ऐसा क्या मैसेज है जो उनको ध्यान से सुनना चाहिए और भविष्य में वो कार्य करने चाहिए, ऐसे कौन से कार्य आप उनको बता सकते हैं?
2: जी तो देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बन से भरता है, तो ऐसे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं और इंडिविजुअल एक्शंस तो बहुत जरूरी है, हमें खुद से समाज तक जाना है और खुद को पहले खुद को बदलना है, खुद को एक एग्जाम्पल सेट करना है समाज के सामने। तो आप किसी भी सिचुएशन में आप कहीं भी हो आप पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं बाहर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में, मैं अपने पीजी में हूँ, बट स्टिल मैं इको ब्रिक्स यहाँ पे भी मैं बनाती हूँ, तो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो पर्यावरण संरक्षण के लिए छोटे छोटे कार्य करिए। आप जैसे इको ब्रिक्स मैं बनाती हूँ, आप इको ब्रिक्स बना सकते हैं और फिर लाइक बहुत सारी चीजें हम जैसे हमें प्लांट्स पे ज्यादा डिपेंड रहना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना, प्लांट्स पे डिपेंड रहिए, आप अपना थैला खुद लेके जाइए बाहर, ऐसे बहुत सारी चीजें लाइक लाइट ऑफ लाइट ऑन, ये हमको बचपन से सिखाया जाता है तो ये सब कुछ चीजें हैं, आप यहाँ से शुरुआत करिए और फिर आगे तो फिर बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे यही है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और घर से अपने शुरुआत कीजिए, एक पेड़ लगाइए अपने घर पे और उसके अच्छे से केयर कीजिए, तो आप उससे कनेक्ट होंगे। तो जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप खुद आइडियाज निकालेंगे कि और ऐसा क्या कर सकते हैं हम मदर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को हार्म कर रही होती है पर हमें उनके बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो हमें उन चीजों के बारे में रिसर्च करना है, हमें पढ़ना है और सजग रहना है और सभी चीजों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है। हमें हमें पेड़ में हमें जान महसूस करनी है, हमें संवेदनशील इतना होना है कि हम सब चीज में जान महसूस करें। तो ऐसा छोटे छोटे ऐसी चीजें हमें करते रहनी चाहिए।
0: शुक्रिया नंदिनी जी। आपके अनुसार पर्यावरण से रिलेटेड शिक्षा, पर्यावरण से की जो जागरूकता है हमारे अंदर, वो कैसे और अच्छे तरीके से छोटे बच्चों में और युवाओं में जनरेट करी जा सकती है?
2: आई थिंक ये चीजें प्रैक्टिकल के थ्रू ज्यादा की जा सकती है। हमें ये नहीं सोचना है कि मैं पेड़ लगाऊंगा, हमें ये कि मैं पेड़ लगा चुका हूँ और उसकी मैं केयर कर रहा हूँ। हमें इस जगह शिफ्ट करना है, हमें बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है कि बच्चों से एक पौधा लगवाइए, उनको बोलिए आप इस पौधे की केयर कीजिए, क्योंकि लाइक पौधा ऐसा चीज है, प्लांट एंड ट्रीज आर द थिंग्स लाइक वो बहुत ही वैल्यूएबल है। हमें मतलब उनको अच्छे से बच्चों को ये चीज सिखानी है, तो हमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसी से आई थिंक ज्यादा लोगों के अंदर और जागरूकता आएगी। आप जैसे बच्चे जा रहे हैं फैन ऑन करके चले गए, तो आप उनको सिखाइए नहीं आप फैन बंद कीजिए, सेव इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें रहती है, छोटी छोटी चीजें जो हमें किड्स को स्पेशली सिखानी चाहिए। और बचपन से जैसे हम इन्हें प्रैक्टिकल कराएंगे इस चीजों का, तो आई थिंक उनके अंदर ज्यादा इस चीजों की वैल्यू आएगी। और जब बड़े होंगे वो और पढ़ेंगे इस बारे में आगे क्लासेस में, तो वो चीजें जब बचपन से भी वो कर रहे होंगे तो उनको एक्चुअल मीनिंग तब पता चलेगा कि ओके हमारे पेरेंट्स हमें छोटे से क्यों बोलते थे कि वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हेन दे विल रीड अबाउट इट तो तब वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इसलिए हमें बचपन से ही बच्चों को नेचर से कनेक्ट करके रखना चाहिए। लाइक माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज कनेक्टेड मी विद नेचर, वो हमेशा से मुझे बचपन से मुझे सिखाते थे कि नहीं बेटा पानी बचाइए, आप नल बंद कीजिए, हमेशा आप घर से निकल रहे हैं बाहर के लाइट एंड ऑल एवरीथिंग ऑफ करके चलिए, प्लांट है बेटा, वो मुझसे पानी बचपन में डलवाते थे कि नहीं आप प्लांट्स पे पानी डालिए, आप कनेक्ट कीजिए नेचर से। आई थिंक चिल्ड्रंस को प्रैक्टिकल के थ्रू नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और चिल्ड्रंस को ही नहीं सबको प्रैक्टिकल करके नेचर से कनेक्ट होना चाहिए।
0: बहुत ही कीमती जानकारी और बहुत ही अच्छी बात बताई है आपने हम सबके लिए। इसके अलावा जो मेरा एक और सवाल है आपसे वो ये है कि जो स्कूल्स और जो कॉलेजेस हैं, इनका क्या कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण की जागरूकता फैलाने में और इसमें युवाओं को मोटिवेट करने में?
2: जी देखिए, स्कूल एंड कॉलेजेस तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि पूरे यूथ और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स सब एक साथ होते हैं, तो प्रोबेबली वो ऐसी प्लेस है कि जैसे अगर टीचर आपको जो बताता है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उसको ग्रैप करते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीखते हैं। तो यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स का तो बहुत ही मेजर रोल है, उनको भी लाइक टाइम टू टाइम बच्चों को उनके प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए। स्कूल कैंपसेस बड़े होते हैं, वहां पे प्लांट्स लगा के उनको बोलना चाहिए कि आप अपने पौधे का केयर कीजिए, क्योंकि बच्चा डेली स्कूल आता है, अब वो अपना एक प्लांट लगाएगा, वो उसको डेली वाटर कर सकता है, तो वो डेली का एक प्रैक्टिकल, वो तो बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ बच्चे और अच्छे से सीख सकते हैं। एंड लाइक वो तो इतना कॉम्पिटिशन कराए ताकि लोग और पर्यावरण के बारे में जाने, जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन हम करा सकते हैं स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज, अगर फिर प्लेस होते हैं जिसके थ्रू वीडियोज एंड प्लेस के थ्रू भी लोगों को हम पर्यावरण के से कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले।

0: रहते हैं, उन्हें प्रोबेबली स्टूडेंट्स से प्रैक्टिकल्स कराना चाहिए, और अपने कैंपस को भी इतना अच्छा ग्रीन एंड ऑल रखना चाहिए कि लोगों को देख के इतना सुकून मिले. तो वो चीजें और ज्यादा कनेक्ट करते हैं जब आप देखते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं, तो एज आई सेड तो वो चीजें ज्यादा वर्क करेंगी. तो यूनिवर्सिटी एंड स्कूल को तो कॉम्पिटिशन कराने चाहिए एंड वो खुद इस चीज में सजग रहेंगे तो आगे और अच्छा कर पाएंगे.
1: शुक्रिया नंदिनी जी.
2: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार.
3: अपने रेडियो अपनी बातें साथी हरो भैया हरो, अपन अभय सुन रहे हते नंदिनी दीक्षित जी को जिनने पर्यावरण को लेके बहुत अच्छो काम करो है गो. अब हमारे साथी जो है तनक सोच में भी हुए के पर्यावरण से जुड़ी हुई बातचीत तो अपन सुपकल कार्यक्रम में करत रहेंगे, लेकिन आज हम होंगे कामयाब में भी सुपकल. तो भैया ऐसा नहीं है, देखो सुपकल को हमने कही थी कि अपन को ध्यान रखने है गो और हर एक चीज में अपन को सुपकल देखने है गो. सो नंदिनी दीक्षित जी जो हैंगी वे एक सफल महिला हैंगी, यानी कि उनने जो काम की वो नींव रखी हती उनमें भी सफल भई हैंगी, यानी पर्यावरण से जुड़ो जो कार्य भी कर रही हती उनमें भी सफल भई हैंगी. यही से अपन को लगो के हम होंगे कामयाब में. आज के दिन अपन जो सफल कहानी लेके आतेंगे तो कायना वा पर्यावरण से जुड़ी भी कहानी आप सबको सुनो आवे.
4: वर्षा हमें भी लगा था कि नंदिनी दीक्षित जैसी ऐसी हमारी जो सफल महिलाएं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लाने बहुत ही नोनो काम करो है गो. और हमें एक बात और कहने वाले हैंगे कि पर्यावरण के लाने तुमने भी बहुत अच्छा काम करो, तो हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देवो चाहते हैंगे. और अपने कुछ अनुभव पर्यावरण से जुड़े जरूर साझा करो, कैसे हम वो और आप सफल कहानी के माध्यम से तो जानते ही हैंगे. वर्षा के बारे में सब लोग ने जानत हैंगे कि वर्षा रेडियो बुंदेलखंड में काम करत हैंगे, लेकिन पर्यावरण के लाने विशेष तौर पर अब एक महीना में इन्हों पुरस्कृत करो गो तो, और विशेष तौर पर इन्हों बुलाओ गो तो कि आप बुंदेलखंड के क्षेत्र में आपने जो सोगहन में मिलके पर्यावरण के लाने जो मुहिम छेड़ी हैगी और पर्यावरण के लाने तरह तरह के कार्यक्रम बनाए हैं, खास तौर पर रेडियो से बनाए जो कार्यक्रम और नैरोकास्टिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करो. तो कछु अपने श्रोता साथियों को पर्यावरण बचावे के लाने कछु संदेश, पर्यावरण संरक्षित के लाने को संदेश आप भी दो.
3: सबसे पहले तो मनीष भैया हम आपको बता देवे कि जो काम की जन तारीफ आप पुल बांधवे जा रहे हैंगे वो काम को वर्षा ने अकेले नहीं करो है गो, हमारी पूरी टीम जैसे कि मनीष भैया हैंगे, माता दीन भैया हैंगे, अपने जगरूप भैया भी हते, उनने भी प्राची रामपाल अबे तक के जितने भी रेडियो के साथी काम करत हते सबने मिलके काम करो है गो. सो ये तारीफ के हकदार अपनो पूरो रेडियो बुंदेलखंड को स्टाफ है गो. सो अनुभव के लाने अगर मनीष भैया आपने बात छेड़ी हैगी तो आपको बता देवे कि सुपकल कार्यक्रम अपन और 2013 से लगातार अपने साथियों के बीच में चला रहेंगे और समय के अनुसार जो समय की मांग होते ही उन सब चीजन को अपने साथियों के बीच में अपन प्रसारण करेंगे. जैसे अगर हमारे कोनो किसान साथी पूछत हेंगे अपन से कि अगर पर्यावरण को सही रखने है गो तो उके लाने अपन और कौन सी बीजन को चयन करवे, कौन सी खाद को उपयोग करवे, तो बस इन्हीं के बारे में अपन और ने जागरूकता बढ़ाई हैगी. काम करवे की तो अपन बात नहीं कह सकत, लेकिन अपन ने जागरूकता बढ़ाई हैगी इन गांवन में. सो जी की वजह से लोग समझ गए हैंगे और अब खुद से काम करवो उनने शुरू कर दो है गो. तो सफलता जो मिली हैगी वह रेडियो बुंदेलखंड को मिली हैगी.
4: बिल्कुल, और संगे संगे आप भी उसके पात्र हकदार होगी. कैसे यूएन क्लाइमेट चेंज यंग लीडर में आपको सिलेक्शन भी बहुत हो, और आपको बता दें वो चाहे जाके बाद सिलसिला रुको नहीं है और एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल करके आज हम और आप देख रहे हैं कि पूरे पेपरों में क्लाइमेट चेंज को लेकर अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र से श्री वर्षा का चयन किया गया था. और बड़े गौरवान्वित की बात है कि इस तरीके की कुछ उपलब्धियां रेडियो बुंदेलखंड को प्राप्त भई हैंगी. तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करत हैंगे आप लोगों को स्नेह जो मिले है गो, और खास तौर पर रेडियो बुंदेलखंड की इतनी चर्चा खास तौर पर पूरी देश में सुनाई जा रही हैगी कि रेडियो बुंदेलखंड द्वारा कितनो अच्छो काम करो जा रहा है गो. तो बहुत बहुत धन्यवाद. अगर साथियों आपको वर्षा की पूरी कहानी आपको सुनने हैगी तो आप फोन कर सकत हैंगे, और अगर सबसे ज्यादा जन के मतलब फोन आ गए हैं कि वर्षा की पूरी कहानी अब तक को सफर आपको सुनने हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर वही है घुमाओ 92 19 20 77 49.
3: बहुत बढ़िया मनीष भज्जा, आपने तो एना ही नोनी बात बता दी हैगी और वर्षा की कहानी इतने अपन सफल कहानी सुन रहे थे और

0: ते ही समाप्त हुए जा रहे हो। सो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दो जावे की इजाजत,
0: फिर उज्जे आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन।

0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हम।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष
2: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। हेलो हेलो हेलो, मैं यानी के वर्षा आपकी आरजे वर्षा और हम दोनों लेकर आए हैं आप सभी के लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है क्लाइमेट काउंटडाउन। जी हाँ साथियों, और इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे अपने शुभ कल कार्यक्रम में।
1: तो सबसे पहले सभी श्रोता साथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है। हमने कई उल्टी गिनती के बारे में सुना है, जन्मदिन से लेकर आईपीएल और नए साल तक, लेकिन यह क्लाइमेट काउंटडाउन क्या है?
2: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्लाइमेट काउंटडाउन एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की श्रृंखला है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जलवायु परिवर्तन वास्तविकता है और इसके बदलाव के लिए हम सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। हमारे पास हानिकारक प्रभाव को उलटने के लिए बहुत कम समय है और यदि हम अभी कार्य नहीं करते हैं तो हम सभी को बाद में पछताना पड़ सकता है।
1: सच है दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने देश में हाल फिलहाल में आई तबाही को देखा होगा। बेंगलुरु में बेजोड़ बारिश के साथ बाढ़ जैसे हालात, उत्तराखंड में बादल फटना, हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और तटीय क्षेत्रों में चक्रवातें होती हैं उनकी बढ़ती संख्या, उत्तर भारत में गर्मी की लहरें, सूखा और न जाने कितनी ऐसी कितनी प्राकृतिक आपदाएं आपने देखी होगी।
2: अरे मनीष जी, अरे सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि उत्तरी भारत में पिछले कुछ दिनों से बेमौसम बारिश भी एक चिंता का विषय बन गया है। क्या आपने कभी गौर किया है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम का अनुमान लगाना कितना मुश्किल हो गया है? सर्दियों के लिए आपको मध्य दिसंबर का इंतजार करना पड़ता था, सितंबर का महीना ऐसा लगता है जैसे जून और मई की गर्मी हो, और अब अक्टूबर के महीने में बिन मौसम बारिश, ऐसा लगता है जैसे मैंने सीजन की पारंपरिक समझ खो दी है कि मौसम कब शुरू हुआ और कब खत्म होता है।
1: हाँ, हमें हमेशा से सिखाया गया कि चार मौसम होते हैं, लेकिन अब मौसम के बदलते मिजाज को देखें कि ये बताना मुश्किल हो जा रहा है कि आखिरकार कौन सा मौसम गर्मी का है या कौन सा बरसात का है।
2: सही कहा तुमने, नेप्स स्पेयर्स समाचारों की तुलना में मौसम से संबंधित खबरों पर अधिक ध्यान देते हैं। तो मनीष जी, हम इसका क्या मतलब निकालें? क्या मौसम में बदलाव सामान्य हो, मौसम स्थिर नहीं है, तापमान और वर्षा में ये दीर्घकालीन बदलाव जलवायु परिवर्तन की घटना का एक हिस्सा है?
1: इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, बस इसलिए हम लेकर आए हैं हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम क्लाइमेट काउंटडाउन। दोस्तों, इस सीरीज के माध्यम से आप जानेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण क्या है, इसके क्या प्रभाव है। इस सीरीज में हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें जलवायु परिवर्तन की परवाह क्यों करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरीके से इससे लड़ सकते हैं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं।
2: मैंने अक्सर लोगों को बात करते सुना है कि हम कैसे जलवायु परिवर्तन से अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं। यह प्रकृति की इच्छा है कि यह कैसे विकसित होता है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, और अगर हम कुछ कर भी सकते हैं तो यह सरकार का काम है, आम लोगों का नहीं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति में बदलाव का कारण मानवीय गतिविधियां हैं जो जलवायु परिवर्तन की मुख्य संचालक हैं। हमारे जैसे सामान्य लोग ही इस परिवर्तन का कारण बन रहे हैं और हम सब मिलकर इस कुछ सरल क्रियाओं को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर इस समस्या से लड़ने में मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं आपसे और कुछ और बातें करें।

0: पर्यावरण और उसमें हो रहे बदलाव के बारे में। तो आइए सुनते हैं।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।
0: तो यहाँ हम एक बहुत सी दिलचस्प कहानी के साथ वापस आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी श्रोताओं का एक बार पुनः। हमारी कहानी दो किरदारों से बनी हुई है, एक सनी और उसकी दादी की इर्द गिर्द घूमती है। ज्यादातर लोगों की तरह दादी भी जलवायु परिवर्तन से जुड़ी कई बातें नहीं समझ पा रही हैं। वह मौसम, जलवायु और पर्यावरण के बीच के अंतर को लेकर उलझन में है। वह ये सोचती हैं कि उसके समय में चीजें आसान थीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को।
2: बेटा सुनो, मैंने आज अखबार में पढ़ा कि पिछले 75 सालों में सितंबर का सबसे गर्म दिन है। क्या हो रहा है? यह सामान्य से कहीं अधिक गर्म है और मुझे याद नहीं है कि सितंबर में पहले कभी इतना उच्च तापमान दर्ज किया गया हो।
3: अरे दादी, पृथ्वी अस्वस्थ है, उसे तेज बुखार है और संक्रमण के लिए हम जिम्मेदार भी हैं। मैं पिछले 7 वर्षों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पिछले 16 वर्षों में मैंने इस तरह के गर्म मौसम का अनुभव नहीं किया। निश्चित रूप से ग्रह अधिक गर्म है और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जलवायु अब बदल रही है। मेरे शिक्षक कहते हैं कि यह सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित है।
2: जलवायु परिवर्तन? पर ये जलवायु परिवर्तन क्या है और ये मैं कितना गर्म महसूस कर रही हूँ, कैसे संबंधित है ये? क्या जलवायु मौसम से अलग है? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना।
3: दादी इधर आओ, जलवायु और मौसम दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने EBS शिक्षक ने मुझे बताया कि किसी स्थान का मौसम वातावरण की अस्थायी स्थिति है, जैसे आंधी या गर्म दिन जो कुछ घंटों, दिनों या हफ्तों में होता है। जलवायु एक स्थान के औसत मौसम है जो लंबी अवधि लगभग 30 साल या उससे अधिक तक फैला हुआ है।
2: आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह मेरे लिए समझ से बाहर है, कृपया मुझे इसे सरल भाषा में समझाएं।
3: अरे मोरी प्यारी दादी, ठीक है, अब ध्यान से सुनो। मौसम की स्थिति अल्पकालिक परिवर्तन है, जबकि जलवायु एक दीर्घकालीन घटना है जो किसी स्थान के सामान्य मौसम को लंबी अवधि के लिए संदर्भित करती है। मनुष्य कुछ ऐसे काम कर रहा है जिससे पृथ्वी की जलवायु तेजी से बदल रही है। ये परिवर्तन मौसम में व्यवधान पैदा करते हैं। और तो और दादी, गर्मी की लहरें, बारिश में देरी, अचानक बाढ़ आना, बार बार सूखा पड़ना, भूस्खलन और फसल खराब होना, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है दादी। मानवीय गतिविधियां ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती हैं दादी।
2: अरे बेटा, अब ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है?
3: ओहो दादी, यह तब होता है जब कुछ गैसें जिन्हें ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जाना जाता है पृथ्वी के वायुमंडल में जमा हो जाती हैं।
2: रुको रुको बेटा, यह कैसा माहौल है और अब यह कहां से आया?
3: अरे दादी, वातावरण गर्मी को पकड़ लेता है और उसे निकलने नहीं देता है, जिससे तापमान नियंत्रित रहता है। यानी पृथ्वी ना ज्यादा गर्म रहती है और ना ही ज्यादा ठंडी रहती है। यह जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसे बनाए रखने और हानिकारक यूवी किरणें को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकने के लिए जिम्मेदार है।
2: हर बार जब आप कुछ कहते हैं बेटा जी, तो आप उन अवधारणाओं और शब्दों का परिचय देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता। सरलता से समझाएं, मुझे यह भी बताएं कि यूवी किरणें क्या हैं।
3: ओ मेरे

0: दादी। ये इतना जटिल नहीं है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे जब बहुत ठंड होती है और आप परते पहनते हैं, एक ऊनी ब्लाउज, एक स्वेटर और फिर एक शॉल। इसी तरह वातावरण को उन परतों की तरह समझें, एक कम्बल जो इसे बचाने के लिए पृथ्वी को घेरता है। यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन से बना होता है, जिसमें हम सांस लेते हैं, ऑर्गन और नाइट्रोजन। यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हानिकारक यूवी किरणों को पृथ्वी से दूर रखता है। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को नियंत्रण करता है। यह एक सुरक्षा कवच है, आपकी शॉल की तरह, जैसे आपका शॉल है उसी तरह। क्या अब समझ में आता है?
1: ठीक है बेटा, तो वातावरण, मौसम और जलवायु सभी जुड़े हुए हैं और एक में परिवर्तन से दूसरे में परिवर्तन होता है, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। लेकिन सनी बेटा, मुझे कुछ बताओ, क्या अलग-अलग मौसम जैसे वसंत, गर्मी, मानसून, सर्दी और शरद ऋतु में भी जलवायु का हिस्सा है?
2: सन्नी एक धैर्यवान लड़का था। दरअसल उन्हें इस बातचीत में मजा आने लगा था। एक बार के लिए उन्होंने दादी से ज्यादा ज्ञानी महसूस किया।
0: हाँ दादी, वे सभी जुड़े हुए हैं। मौसम एक वर्ष में औसत जलवायु स्थितियां होती हैं, जो वर्ष के हफ्तों और महीनों में होने वाले कुल मौसम के आधार पर विभाजित होती हैं। मौसम वह है जो वातावरण की परिस्थितियों थोड़े समय के लिए होती हैं, और मौसम में बदलाव से जलवायु में परिवर्तन होता है, जो कि 30 वर्षों या उससे अधिक समय में किसी स्थान पर औसत मौसम की स्थिति होती है।
2: दादी अपने पोते से बहुत प्रभावित थी।
1: अब जब आप इन सब बातों का जिक्र करते हो बेटा, तो यह मुझे समझ में आता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, हम अक्टूबर के महीने में अपने कम्बल और सर्दियों के कपड़े निकाल देते थे, लेकिन अब हम दिसंबर के मध्य तक मुश्किल से सर्दियों के कपड़े पहनते हैं। क्या जलवायु परिवर्तन भी इसका कारण है?
0: इसके लिए जलवायु परिवर्तन जिम्मेदार है दादी। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, मौसमी परिवर्तन अधिक अप्रत्याशित हो जाते हैं।
1: सनी बेटा, मुझे एक बात बताओ कि क्या यह जलवायु परिवर्तन केवल शहरों को प्रभावित कर रहा है या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं?
0: दादी, जलवायु परिवर्तन ने किसी को नहीं बख्शा।
3: फिर लोग इसके बारे में अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं और कोई समाधान क्यों नहीं देख रहा है?
0: दादी, मुझे लगता है मैंने आपको एक दिन के लिए पर्याप्त जानकारी दे दी है।
1: नहीं, लेकिन माहौल के बारे में और बताओ।
2: लेकिन दादी ने जोर देकर कहा कि सनी ने जितना साझा किया था, कहीं अधिक वह अवशोषित कर सकती हैं। कोई विकल्प ना रह जाने पर वह समझाने लगा।
0: दादी, वातावरण 5 प्रमुख परतों, तापमान और पृथ्वी से दूरी के आधार पर समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। स्ट्रेटोस्फीयर के भीतर एक ओजोन ढाल या परत है, जो सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है।
1: ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो मैं मान रही हूं, अब हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है ना?
0: हाँ दादी, ये बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि यह मानव त्वचा जैसे जीवों की सुरक्षात्मक परतों में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं ये किरणें हम तक कैसे पहुंचती हैं?
1: अगर मुझे इतने जटिल प्रश्न का उत्तर पता होता, तो क्या मैं आपके साथ यह बातचीत कर रही होती, चतुर साहब?
0: दादी, बहुत सही। ओजोन परत पतली हो रही है, क्योंकि हमने रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, एसी जैसे उपकरणों का उपयोग बढ़ा दिया है। वे क्लोरोफ्लोरोकार्बन

0: या CFC के रूप में जानी जाने वाली गैस छोड़ते हैं, जिससे पृथ्वी के वातावरण और जलवायु में गंभीर परिवर्तन हुए हैं।
1: दादी चिंतित थी। उसने जवाब दिया कि यह इतनी गहरी चिंता का विषय है तो लोग इस मुद्दे पर अधिक बात क्यों नहीं कर रहे हैं।
0: मैं मानता हूँ कि इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन क्या करें दादी, लोग उन्हें पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पा रहे हैं।
1: दादी अब बहुत डर गई थी। वह सवाल पूछने लगी कि
2: हम इस मुकाम पर कैसे पहुंचे सनी बेटा।
1: उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पुरानी और वर्तमान पीढ़ियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं किया। दादी स्तंभ रह गईं। वह सोचने लगी कि और क्या किया जा सकता है। वह सनी से बात करना चाहती थी, लेकिन तब तक सनी के ट्यूशन जाने का समय हो गया था। उन्होंने दादी से वादा किया कि वे हर दिन जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करेंगे और वह उन्हें बताएंगे कि उनकी पीढ़ी अलग तरीके से क्या कर सकती थी। सनी ने अपना बैग उठाया और चला गया। दादी अपने अखबार में वापस आ गईं और सबसे गर्म दिन पर समाचारों को समझने की कोशिश करने लगीं।

0: दोस्तों, दादी और सनी की बातचीत ने वास्तव में हम सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हमें अपने कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमारे कार्यों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है और हमें इस पर ध्यान देना और तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
1: अरे वर्षा, न केवल तेज गति से जलवायु बदल रहा है बल्कि इस तरह की समस्याओं से पृथ्वी ग्रह को अपनी रक्षा करने के लिए सभी प्राकृतिक सुरक्षा से समझौता किया गया है। ओजोन परत, जो कि वायुमंडल की एक पतली और महत्वपूर्ण परत है, घट रही है। वो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें पौधों, जानवरों और मनुष्यों को समान रूप से नुकसान पहुंचा रही हैं। अनियंत्रित मानवीय कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में गंभीर परिवर्तन हुए हैं, जिसका परिणाम पहले से भुगत रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए और भी बुरा हाल होगा।
0: प्रिय मित्रों और श्रोताओं, आइए हम इतने निराश ना हो, जबकि स्थिति गंभीर है। यह निराशाजनक नहीं है, इस तथ्य के बावजूद कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, हमारे पास अभी भी अपने कार्यों को उलटने का समय है। हम जिन सरल क्रियाओं को अपनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उनके जितना हम सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक व्यापक परिणाम हो सकते हैं। हम में से हर एक छोटे छोटे उपायों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में योगदान दे सकता है, जिन्हें हम अपनाते हैं।
1: सकारात्मकता के लिए धन्यवाद वर्षा। हाँ दोस्तों, अगर हम सब मिलकर काम करने और समाधान के बारे में सोचने का फैसला करते हैं और नई और पुरानी प्रथाओं से सीखते हैं, तो हम जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमें अब कार्रवाई करनी होगी। अगले सप्ताह उसी समय ट्यून करना ना भूले क्लाइमेट काउंटडाउन के अगले एपिसोड में। यदि आपके कोई प्रश्न है तो हमें पूछ सकते हैं हमारे इस नंबर पे। नंबर है हमारा
0: 9425141726। और श्रोताओं, हमारा पत्र लिखने का पता भी है। हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा।
0: हम अभी के लिए आपकी छुट्टी लेते हैं, लेकिन अपने स्वयं के रेडियो बुंदेलखंड पर बने रहें, सुनते रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बातें। तो साथियों, चलते हैं इस कार्यक्रम से, फिर होगी मुलाकात अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए नमस्कार।
2: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए।

0: Hello, Saheli. नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारी सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के दिन कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकती हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकती हैं। तो आइए, हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, को बोल रही?
1: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
0: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या बचाती हो?
1: दीदी का हमें एक सुना दो एक गीत।
0: हाँ, कौन सा सुना दे?
1: बिल्कुल, मैं चल जाती हूँ तुम्हारी नजर जा में, भाई दीवानी में बारी हमारी जावा साल गाँव का
0: संध्या सागम को है वो।
1: हाँ
0: बिल्कुल, ये नहीं, नो हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
1: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
0: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
1: दीदी, सुना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में का हो रहा हूँ आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: को बोल रही?
1: हमारे ही बोल रहा है मस्त पैसे।
0: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लुक किसने आपको?
1: हमें तू माशाल्लाह तो मत जा।
0: अरे वाह क्या बात है, तू
1: पंचांदे तो और आनो। हाँ वही लोकगीत सुनने में
0: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोकगीत। ठीक है
1: ठीक है नमस्कार।

सखियों, अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को। और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं, तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने की दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

किसानी की संग संग पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुओं के पोषण पे, उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जात के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य, अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन की संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते, फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती के

0: लाओ मोए कंगना जैसी पेरे देवरानी। देखो कितनो बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राजी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है।
1: जी हाँ,
0: पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने।
1: जी हाँ,
0: अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें।
1: जी हाँ,
0: अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें जिससे बारिश एवं नालियों का पानी मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशुपालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशुपालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकती हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जापान ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है। अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों सुनत ही गीत खुंजिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल जी।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिन आपको मिला री उर्जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहे थे अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़कियावाड़ा से आपके दोस्त मातुदीन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी पर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में ए बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन बढ़िया बढ़िया सी गारियन को, और इन गारियन को अपन आनंद ले हैं। जी हाँ दोस्तों, काय के जब ब्याह शादियन को मौसम आ जाता, और ऐसे मौसम पे महिलाएं जब गारी गाती हैं तो देखो कितनो सुहानो लगत मड़वा की तरह। और जब मड़वा की तरह गारी हो तो अपने गांव पूरा मोहल्ला के लोग बाग सुनत हैं। और

गारी विधा में जो चीज दर्शाई जात गाई जात बा कितनी सुहानी लगत। सो दोस्तों आज आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली खो। सो आओ दोस्तों देर ना करत भाई सुनत ही बढ़िया सी प्यारी सी गारी खो और लेते हैं इको आनंद।

बिल्कुल दोस्तों, घर होती आदर कर लेती। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जन ने सुनी है, इगारी को आनंद लो। इगारी खूं गा रहे थे हर प्रसाद कुशवाहा जी और उनके संगी साथी। सो दोस्तों, आप एक क्रम में सुनते हैं अगले साथी इनकी गारी इनखों।

देखो दोस्तों, जब कितनी बढ़िया गाड़ी अपन सब जन ने सुनी है, ई गाड़ी को आनंद लो है। और दोस्तों ई गीत को गा रहे थे प्रताप सिंह यादव जी और संगे गा रही थी रेखा शर्मा जी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गाड़ियन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।

0: बिटिया दइयो तो धन दइयो राम, गरीबी ऐसी दइयो ना। देखो दोस्तों, कितनो प्यारी जापन ने गारी सुनी, ई गारी को आनंद लाओ है। ई गारी खूं गा रही थी उमा प्रजापति जी। अब दोस्तों ये गारी के संगे संगे आओ सुन लेते हैं अगले साथी इनकी और गाई भाई गारियन खूं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में, और सुनत रहो जो कार्यक्रम राग बुंदेली।
1: हाँ।

बिल्कुल साथियों, हमने खबर ना पाई हो सजना कब के आए। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, इको आनंद लव है। ई गारी खो गारी है सुशीला देवी जी। अब आओ दोस्तों, एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों की गाई भाई गारियन खो।

बिल्कुल, तुम बड़े प्रेम से आइयो समधी हमें भूलना जइयो। देखो कितनी प्यारी जा गारी अपन सब जनन ने सुनी है, ई गारी को आनंद लो है। ई गारी को गा रहे थे भैया गंगाराम कुशवाहा जी। अब दोस्तों गंगाराम भैया जी की गारी के बाद हम आप सब जन को जो बता देवे कि आज के ई कार्यक्रम विधा बुंदेली से अपने दोस्त माता दिन भैया को जाबे को समय हो गयो है। सो हमें दो ई कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात ई कार्यक्रम में ई बेरा पे। जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे जी आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। सो दोस्तों, आप सब जन खो जी आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होते है, सो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सके। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92-19-20-77-49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।